है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तो हाँ सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेक्शन तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तुहां सारे ए बनी रिया सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन दी।

रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार। भाई बहन का रिश्ता है सबसे खास और शानदार। राखी के धागे में छिपी है विश्वास की मिठास। हर जन्म में बना रहे भाई बहन का साथ। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में प्रेम, खुशियाँ और अपनों का साथ लेकर आए। भाई बहन के इस खूबसूरत रिश्ते में हमेशा स्नेह, सम्मान और विश्वास की डोर मजबूत बनी रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। रेडियो गुंजन, आपकी आवाज़, आपके अपनों

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ,
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।
4: हेलो, देख ले भाई कुछ इंतजाम होता उधर।
5: मैंने कितनी बार कही थी, मेरी सुनते ही कहाँ है।
4: हाँ तने बेरा, बस सारी दुनियादारी का इब की बार मदद कर दे बस। राम राम राम राम। 30,000 का होगा बीज, कैसे करूँगा इंतजाम बता। किसानी कैसे होती है पता भी है तने, ये लेन देन के काम मन से मालन दे। तू घर का चूल्हा चौक देख ले, वही बहुत है।
5: ये लेन देन ठीक से होगा तभी तो घर संभलेगा ना।
4: तने समझ है लेन देन की, ले पकड़।
5: पैसा सही तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ बचाना है, यही होवे ना लेन देन।
4: बोलन में और करण में बहुत फर्क हुआ है।
5: सही कह रहे हो, ये देखो 17,000 है मेरे पास।
4: पासबुक,
5: दूध बेच के सारा पैसा नहीं दिया था तेरे थे, थोड़ा जमा करवा दिए थे खाते में, अब बाकी पैसों का इंतजाम कर लो, हम दोनों मिलकर अपना भला बुरा नफा नुकसान सब देख सके हैं।
4: हाँ घनश्याम, तेरी बहन ने बचा लिए ना, तो भैंस बेचनी पड़ती, ईब लग गया है, ये असली किसान तो तेरी बहन है।
6: महिलाओं की आर्थिक निर्णयों में बराबर की भागीदारी, मतलब परिवार में उन्नति।
7: रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन,

जन्माष्टमी पर्व आइए मिलकर मनाएं हम सब एक साथ। आने वाले जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

0: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो। क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
1: नेहा।
2: हाँ जी।
1: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
2: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
1: अच्छा बाबा, बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
2: नहीं जाना।
3: ये भगवान क्या जुलूम है,

रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार। भाई बहन का रिश्ता है सबसे खास और शानदार। राखी के धागे में छिपी है विश्वास की मिठास। हर जन्म में बना रहे भाई बहन का साथ। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में प्रेम, खुशियाँ और अपनों का साथ लेकर आए। भाई बहन के इस खूबसूरत रिश्ते में हमेशा स्नेह, सम्मान और विश्वास की डोर मजबूत बनी रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। रेडियो गुंजन, आपकी आवाज़, आपके

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है।
2: और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और

0: हेलो, देख ले भाई, कुछ इंतजाम होता होता है।
1: मैंने कितनी बार कही थी, मेरी सुनते ही कहाँ है ये।
0: हाँ, तने बेरा, बस सारी दुनियादारी का इब की बार मदद कर दे बस। राम राम राम राम। 30,000 का होगा बीज, कैसे करूंगा इंतजाम बता। किसानी कैसे होती है पता भी है तने? ये लेन देन के काम मन से मालन दे, तू घर का चूल्हा चौको देख ले, वही बहुत है।
1: ये लेन देन ठीक से होगा तभी तो घर संभलेगा ना।
0: तन्ने समझ है लेन देन की? ले पकड़।
1: पैसा सही तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ बचाना है, यही होवे ना लेन देन।
0: बोलन में और करण में बहुत फर्क हुआ है।
1: सही कह रहे हो। ये देखो 17,000 है मेरे पास।
0: पासबुक?
1: दूध बेच के सारा पैसा नहीं दिया था तेरे थे, थोड़ा जमा करवा दिए थे खाते में। अब बाकी पैसों का इंतजाम कर लो, हम दोनों मिलकर अपना भला बुरा नफा नुकसान सब देख सके हैं।
0: हाँ घनश्याम, तेरी बहन ने बचा लिए ना, तो भैंस बेचनी पड़ती। ईब लग गया है, ये असली किसान तो तेरी बहन है।
2: महिलाओं की आर्थिक निर्णयों में बराबर की भागीदारी, मतलब परिवार में उन्नति। रिमझिम बरसता भादो का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन।

0: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा, चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा। इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो, क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
1: नेहा।
2: हाँ जी।
1: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
2: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
1: अच्छा बाबा, बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
2: नहीं जाना।
3: ये भगवान, क्या जुलूम है।

दोस्तों कहते हैं मंदिर की चौखट तक पहुंचना आसान है, लेकिन वहां से मिली सीख को अपने जीवन में उतारना ही असली भक्ति है। भगवान को फूल चढ़ाने से पहले अपने व्यवहार में प्रेम चढ़ाइए, माथा झुकाने से पहले अपने अहंकार को झुकाइए, क्योंकि सच्ची पूजा वही है जिसके बाद हमारे शब्दों में मिठास, दिल में दया और कर्मों में इंसानियत दिखाई दे। ईश्वर मंदिर में मिले या ना मिले, लेकिन अच्छे कर्मों और सच्ची इंसानियत में उनकी मौजूदगी जरूर महसूस होती है। नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ बहुत ही खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ। जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से कार्यक्रम में, और आज की सुबह शुरुआत जो है आप सभी की बहुत ही अच्छी रही होगी, ये उम्मीद करते हैं। आज 28 अगस्त 2026 का दिन, बहुत ही प्यारा सा शुक्रवार का दिन। जी दोस्तों, खूब इंजॉय, खूब अपनापन आज के दिन झलक रहा है हर किसी रिश्ते में, खास करके एक बहुत ही अनमोल से रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में। सबसे पहला रक्षा सूत्र भाई बहन नहीं है, बल्कि एक पत्नी ने अपने पति को और एक देवी ने राजा को बांधा था। जी दोस्तों, भविष्य पुराण के अनुसार जब असुरों और देवताओं के युद्ध में देवता हारने लगे, तब देवगुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्र की पत्नी सची ने श्रावण पूर्णिमा के दिन मंत्रों से अभिमंत्रित रेशमी धागा इंद्र की कलाई पर बांधा था। इससे इंद्र को विजय मिली। ये इतिहास का सबसे पहला रक्षा सूत्र माना जाता है। जी दोस्तों, तो आज का दिन आप रक्षाबंधन का त्योहार जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, भाई बहन के प्यार को समर्पित है आज का ये प्यारा सा खूबसूरत सा दिन और ये कार्यक्रम भी। जी दोस्तों, तो आज के दिन बहुत खास बातें, बहुत खास प्यारे प्यारे से गीत आप सभी तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, और आप सभी को रक्षाबंधन त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये प्यार इसी तरह से आप सभी की जिंदगी में पनपता रहे, बढ़ता रहे, कभी कम ना हो, ये हम प्रे करते हैं भगवान जी से। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं मनोरंजन की और एंजॉय करते हैं इस पावन से पर्व के अवसर पर प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

तो सो अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल के आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये बहुत ही प्यारा सा गीत। जी दोस्तों, हर रिश्ता वैसे तो बहुत ही एक नाजुक से मोड़ पे होता है, लेकिन हम अगर उसे पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ निभाएं तो वो बहुत मजबूती पकड़ लेता है। और आज का दिन भाई बहन के लिए, और जिनकी बहन नहीं है वो भाई भाई भी आपस में इस त्योहार को आपस में राखी बांध के सेलिब्रेट कर सकते हैं। दोस्तों कहते हैं ना, मन में वो श्रद्धा और भाव होना चाहिए, बाकी तो खैर रिश्तों को समझने की एक हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाती है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ लेकर चलते हैं आप सभी को मौसम के अपडेट के। और तो इस समय धर्मशाला का तापमान लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप सभी महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार अगर हम बात करें तो 31 अगस्त, 1 और 2 सितंबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले 28 से 30 अगस्त तक मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। इन 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। जी दोस्तों, तो इस तरह से रहेगा मौसम का हाल, मौसम की अपडेट मौसम विभाग के अनुसार। आंखों देखा हाल आप सभी को बता दूं तो फिलहाल जो है मौसम साफ है, बिल्कुल क्लियर है, धूप लगी हुई है हल्की हल्की से, तो त्योहारों को और भी ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत बनाने के लिए आज एक दूसरे के साथ मिलना, भाई के साथ मिलना, बहनें अपने मायके जाएंगी और उस प्यार को और बढ़ाएंगी। होते हैं ना कुछ खास दिन होते हैं दोस्तों, जिसको और भी खास बनाया जा सकता है इस प्यार से, अपनेपन से, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, मन से, सच्ची लगन से। इन रिश्तों की अहमियत समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये पल हमारे पास अगले पल हो ना हो नहीं जानते। कौन जिंदगी का साथ छोड़कर चला जाए ये भी कोई नहीं जानता, तो इसलिए हर एक पल को खूबसूरती के साथ संजोइए और उन यादों को अपनी जिंदगी में समा लीजिए, ताकि आपके चेहरे पर उन्हें याद करके ही मुस्कान आ जाए। यही होती है रिश्तों की वैल्यू। जी दोस्तों, तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, कुछ गंभीर बातें, कुछ मनोरंजन से भरी बातें, सारी बातों की तरफ नजर दौड़ाएंगे, लेकिन फिलहाल नजर दौड़ाएंगे एक प्यारे से

तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया और बिल्कुल आज मस्ती भरा दिन है तो मस्ती तो जरूर बनती है जी दोस्तों। भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है, कभी लड़ाई कभी झगड़ा तो कभी एक ही सेकंड में वो प्यार भी अपने आप शुरू हो जाते हैं, मतलब रिश्ता अपने आप सुलझता जाता है, अगर बिगड़ता है तो सुलझ भी जाता है। बस थोड़ा सा हमें रिश्तों की अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों 9:20 हो चुके हैं, क्योंकि अभी तो हमारा सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन कुछ ख़ास बातें कुछ ख़ास जानकारियां जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो आइए लेकर चलते हैं आप सभी को प्रादेशिक समाचारों की और उसके बाद फिर से वापस जुड़ेंगे आप सभी के साथ ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारे मनोरंजन के साथ।

वर्षों में राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों में पहुंचे 7.5 करोड़ से अधिक सैलानी। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आकांक्षी जिला चंबा के किसानों को मिल रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल की सुरक्षा। और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के तहत नर्सिंग योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए विदेश में नौकरी का अवसर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में ये योजना एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध हुई है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। इस योजना के तहत देश भर में 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते शुरू किए गए हैं। राज्य पर्यटन के लिए सैलानियों का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। बीते 3.5 वर्षों में 7.5 करोड़ से अधिक पर्यटक हिमाचल पहुंचे हैं, जिनमें 2,65,000 विदेशी पर्यटक शामिल है। विधानसभा में कल ये आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए हिमाचल पसंदीदा पर्यटन स्थल बनकर उभरा है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठा रही है। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार आज देश सहित प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी दीर्घायु व सुखद भविष्य की कामना करती है। शिमला के मेडल बाजार

0: स्थित शिव मंदिर के पुजारी वासुदेव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार शुभ माना जा रहा है और आज बहनें पूरे दिन भाई को राखी बांध सकती है।
1: जो रक्षाबंधन का त्योहार है श्रावण मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन जो है मनाया जाता है, क्योंकि इस बार भद्रा कोई नहीं है तो इसलिए जो ये त्योहार है आपका पूर्णिमा का 28 तारीख को जो है सारा दिन आप मनाने के लिए सज्ज है। पूर्णिमा और अमावस्या ये उसमें ग्रहण कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में जो है हर पक्ष में लगता है। तो भारतीय समय में तो रात 8:04 से ये ग्रहण लगे 11:00 तक, लेकिन यहाँ सुबह होगी तो यहाँ चंद्रमा ना दिखाई देने से ना ही उसका असर होगा, ना ही मान्य होगा, ना ही सूर्य लगेगा।
0: केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के प्रदर्शन को सुधारने और उसमें तेजी लाने के लिए शुरू की गई रैंप परियोजना के तहत प्रदेश में उद्यमियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत सोलन जिला के कुनिहार में महिला उद्यमियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
2: केंद्र सरकार की रैंप परियोजना के तहत सोलन जिला के कुनिहार में महिला उद्यमियों के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 80 से अधिक महिला उद्यमियों ने भाग लिया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस कार्यशाला में उद्यमियों को वित्तीय सहायता के स्रोतों, बैंकिंग सुविधाओं, सरकारी योजनाओं, उद्यम स्थापना व विस्तार के अवसरों, नेटवर्किंग और उद्यमिता विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमियों को अपने व्यवसाय को शुरू करने, विकसित करने व विस्तार करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना रहा। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं ने व्यवसाय में आ रही दिक्कतों को साझा किया, जिसका विशेषज्ञों ने मौके पर ही निदान और मार्गदर्शन किया। समाचार कक्ष से मैं स्वीटी लवली।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं।

0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला के पालमपुर में कथित तौर पर पैसों के अभाव और इलाज ना मिलने के कारण हुई एक मरीज की दुखद मृत्यु के बाद प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक विपिन सिंह परमार ने प्रदेश सरकार पर हिम केयर योजना को बंद करने का आरोप लगाया है। विपिन सिंह परमार ने घटना पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि केवल 1.5 लाख या 50,000 रुपए जैसे मामूली बजट के अभाव में प्रदेश के बेबस लोग परेशान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में हेम केयर और सहारा जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं से आपातकाल के समय लोगों को समय पर कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाया जाता था, जबकि वर्तमान सरकार पर राजनीतिक द्वेष और बदले की भावना से इन योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। आकांक्षी जिला चंबा के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाभकारी सिद्ध हो रही है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में रबी की फसल में जिला में 7,346 किसानों को बीमा कवर उपलब्ध करवाया गया है, जबकि खरीफ की फसल में 5,376 किसान लाभान्वित हुए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन 2026 के तहत 31 अगस्त तक फसल के लिए बीमा कवर उपलब्ध रहेगा। किसानों को इसका लाभ देने के लिए कृषि विभाग प्रयासरत है। मक्का और धान की फसलों के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 1200 रुपए के प्रीमियम पर 60,000 रुपए तक का फसल बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए विभाग ने संबंधित बीमा कंपनी एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों को किसानों को योजना से जोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: प्रदेश के नर्सिंग योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए विदेश में नौकरी का एक बेहतरीन अवसर राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा प्रदान किया जा रहा है। निगम के माध्यम से इजराइल स्थित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा घर पर मरीजों की देखभाल करने के लिए नर्सिंग सहायक के पदों पर भर्ती की जा रही है। कुल्लू जिला रोजगार अधिकारी विनोद कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय मुद्रा के अनुसार करीब 2 लाख रुपए मासिक वेतन मिलेगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का एक शीर्षक है, प्रदेश में 15 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वाहनों के नहीं होंगे चलान। हिमाचल दस्तक लिखता है, हिमाचल हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हाईकोर्ट ने रद्द किए कुलपति की नियुक्ति के नियम। पंजाब केसरी के अनुसार आईजीएमसी शिमला में 202 करोड़ का दवा खरीद घोटाला। दैनिक भास्कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, महिला उत्पीड़न की शिकायतें अब गोपनीय रहेगी, पीड़िताओं को मिलेगा न्याय। दिव्य हिमाचल के शब्द है, 3 साल में हिमाचल में आए 7.5 करोड़ से अधिक सैलानी। रक्षाबंधन पर हिमाचल में सार्वजनिक अवकाश की खबर भी आज अधिकांश समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। दिव्य हिमाचल का कहना है, हिमाचल में पहली बार रक्षाबंधन पर सरकारी छुट्टी। नहीं लगेंगे एथेनॉल प्लांट, ज्यादा बिजली की खपत वाले उद्योगों पर रोक, अमर उजाला की एक अन्य खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष हुए पूरे, देश भर में जनधन खातों की संख्या पहुंची 59 करोड़ के पार। पर्यटन राज्य के रूप में हिमाचल का आकर्षण बढ़ा, 3.5 वर्षों में राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों में पहुंचे 7.5 करोड़ से अधिक सैलानी। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आकांक्षी जिला चंबा के किसानों को मिल रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल की सुरक्षा। और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के तहत नर्सिंग योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए विदेश में नौकरी का अवसर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद और समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आज का दिन बहुत ही खास है आप सभी के लिए, खास करके एक भाई और बहन के लिए। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार आते ही हमारे मन में एक खूबसूरत सी तस्वीर उभरती है। बहन की कलाई पर बंधी राखी, भाई की ओर से सुरक्षा का वचन, मिठाई की मिठास और रिश्तों में प्यार की गर्माहट। लेकिन आज हम इसी रक्षा शब्द का एक बड़े अर्थ में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, रक्षा सिर्फ कहते हैं ना कि वैसे भी हर दिन की जो शुरुआत होती है, हर नए पल की शुरुआत होती है, तो सभी के लिए वो खुशियों भरा हो ऐसा जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों के लिए खुशी भरा रहता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दर्द भरा भी वो रहता है। रक्षा सिर्फ भाई बहन की नहीं, रक्षा हमारी धरती की भी होनी चाहिए, रक्षा हमारे पहाड़ों की भी, रक्षा हमारी नदियों की भी और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की भी। जी दोस्तों, बहुत ही खास बातचीत आज के इस खास अवसर पर, रक्षाबंधन के त्योहार के अवसर पर एक बहुत ही खास बातचीत आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ कि एक और चेतावनी, हिमालय की रक्षा और हमारी जिम्मेदारी। जी दोस्तों, नेपाल में हुई ये घटना, ये त्रासदी जो हमारे सामने है, इसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। और इतने समय से हम कह रहे हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ शायद हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन हम फिर भी उस बात से सहमत नहीं है। शायद हमें ऐसा लगता है कि शायद ये बस कहने सुनने की बातें हैं। तो देखिए आज ये कहर किस तरह से उन लोगों ने फेस किया, तो आने वाला पल किस तरह से रहने वाला, क्योंकि कोई नहीं जानता कि समय किस तरह से करवट बदल दे, कब करवट बदल ले। तो फिलहाल हमें बहुत सारी बातें इसके बारे में हम करेंगे दोस्तों, जानेंगे कि किस तरह से इस सिचुएशन को फेस किया गया है और खास करके कहाँ कमी हमारी सोच में या फिर व्यवस्था में किस तरह से है। फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये खूबसूरत संगीत, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं कार्यक्रम में 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

तो इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। रक्षाबंधन का त्योहार आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों, और इसी अवसर पर हम एक बहुत ही खास बातचीत, एक ऐसी घटना की जिसने एक बार फिर से पूरे हिमालय क्षेत्र को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, हिमालय केवल बर्फ से ढकी चोटियों का नाम नहीं है, यही हिमालय हमारी नदियों का स्रोत है, हमारे जंगलों का आधार है और करोड़ों लोगों के जीवन का सहारा है। लेकिन जब यही हिमालय अपना रौद्र रूप दिखाता है तो इंसान की सारी तैयारियां छोटी पड़ जाती हैं। दोस्तों, नेपाल की पहाड़ी जिले रसुबा में भोटे कोशी नदी में आई अचानक और भीषण बाढ़ ने इसी खतरे की ओर हमारा ध्यान खींचा है। इस आपदा में जनहानि के साथ साथ मकानों, सड़कों, पुलों और जल विद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की खबर ने चिंता और बढ़ा दी है। दोस्तों, इस घटना की सबसे चिंताजनक बात केवल बाढ़ की व्यावहता नहीं है, बल्कि ये सवाल भी है कि आखिर इतनी बड़ी बाढ़ आई कैसे। प्रारंभिक रिपोर्टों की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार नेपाल तिब्बत सीमा के निकट पहाड़ी क्षेत्र में चट्टानों और मिट्टी के खिसकने से नदी का मार्ग बाधित हुआ। इससे पानी जमा होकर झील जैसी स्थिति बनी और उसके टूटने से अचानक तेज बहाव आया। यानी ये केवल सामान्य बारिश से आने वाली बाढ़ नहीं थी, बल्कि पहाड़ी भूगोल, नदी के प्रवाह और प्राकृतिक घटनाओं के आपस में जुड़ने का परिणाम भी हो सकती है। और यही हमें एक महत्वपूर्ण सबक देता है। हिमालय में आपदा कभी भी एक कारण से नहीं आती। कभी अत्यधिक बारिश, कभी बादल फटना, तो कभी भूस्खलन, कभी हिमस्खलन और कभी ग्लेशियर से जुड़ी घटनाएं, ये सभी मिलकर कुछ ही घंटों में परिस्थितियों को बदल सकती हैं। और इसी तरह से हुआ नेपाल में। जी दोस्तों, कई बार हमारी छोटी छोटी सी लापरवाहियां बहुत बड़ी एक मुसीबत को अंजाम दे देती हैं। और नेपाल की इस घटना में बात करें दोस्तों इंडिया की, तो नेपाल में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने राहत अभियान जो है वो तेज कर दिया है। भारत की दूसरी राहत उड़ान जो है वो नेपाल के लिए रवाना हो गई है जी दोस्तों, जिसमें कि राहत सामग्री, जरूरी दवाइयां और खाने के पैकेट भेजे जा रहे हैं। इससे पहले भी भारत ने राहत सामग्री की एक खेप जो है वो नेपाल भेजी थी और लगातार जो है वो वहाँ अपना सपोर्ट भारत जो है पूरी तरह से दिखा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ये। और दोस्तों, इससे हमें सबक भी लेना चाहिए कि जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका भुगतान जो है हमें बहुत ही भयानक रूप से करना पड़ सकता है। तो अभी भी अगर हम इस सबक से सीख नहीं लेंगे तो शायद आने वाले समय में न जाने किस तरह से सिचुएशंस हमारे सामने आने वाली हैं। तो ये बहुत ही खास बातचीत रहने वाली है दोस्तों आज के कार्यक्रम में आप सभी के लिए। फिलहाल आइए इसी के साथ लेकर चलते हैं आप सभी को एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

तो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और बहुत ही प्यारा सा ये म्यूजिकल ब्रेक आप सभी ने एंजॉय किया। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके, और आज का

दोस्तों, भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन को खे की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। जी दोस्तों, श्रावण में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी भी कहते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। रक्षा का अर्थ है सुरक्षा और बंधन का अर्थ है प्रेम और कर्तव्य निष्ठा का अटूट बंधन। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की सफलता की कामना के साथ उनको तिलक लगाती हैं और दाहिनी कलाई पर राखी बांधते हुए भगवान से उनके मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बांधती हैं, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे पुत्री द्वारा पिता को भी बांधी जाती है। जी दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को राखी के बदले में कुछ उपहार देते हैं। रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में राखी बांधना बहुत ही फलदायी माना गया है। जी दोस्तों, तो बिल्कुल जिस हिसाब से अगर हम मुहूर्त की बात करें तो बताया जा रहा था कि 9:48 तक जो था वो शुभ मुहूर्त था राखी बांधने का। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने राखी बांध ली होगी और खूब सारा एंजॉय जो है आज पूरे दिन आप सभी करने वाले हैं, क्योंकि बहनें लंबे समय के बाद अपने घर मायके आई हैं। और कहते हैं ना दोस्तों, जब जहां बचपन बीता हो वहां वो यादें ताज़ा हो जाती हैं, फिर से उस बचपन में जाने का मन करता है। लेकिन ये भाई बहन का रिश्ता ही एक बचपना सा होता है, क्योंकि जब भी थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है तो प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। तो फिलहाल आइए दोस्तों, इसी प्यारे से रिश्ते को सेलिब्रेट करते हुए हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

तो रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार के साथ साथ हम बात कर रहे हैं नेपाल की घटना की, क्योंकि जहां हम यहां खुशी के साथ त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, सोचिए वहां किस तरह से लोगों ने उस सिचुएशन को फेस किया होगा। तो उस याद में या उस चीज को हम थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा तो बना ही सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम वहाँ जा के हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन जान तो सकते हैं कि आखिर इसके पीछे रीजंस क्या रहे होंगे, क्या ऐसे कारण रहे होंगे कि इतनी बड़ी घटना जो है उन्हें फेस करनी पड़ी। दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत पहले से ये कहा जा रहा था कि ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं कहीं ना, तो हमें जो है अपनी

बड़ी हो सकती है ना। बिल्कुल दोस्तों, नेपाल में बचाव दलों की कोशिशें भी हमें यही संदेश देती हैं कि संकट के समय मानवता सबसे बड़ी ताकत है। तो ये बात हमें ये सीख दे रही है, जो हम जमीनी विवाद में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, और जहां हम भाई बहन के रिश्ते की बात कर रहे हैं ना दोस्तों, कई बार जो ये पैसों का एक लालच होता है ना, धन दौलत का ये लालच उस रिश्ते को भी बिगाड़ कर रख देता है। तो ये जो इतनी बड़ी घटना है, इससे हमें एक सीख लेनी चाहिए कि जिस धन दौलत के लिए हम इतना लड़ रहे हैं, इतना झगड़ रहे हैं, आपसी रिश्तों को बिगाड़ रहे हैं, क्या हमें पता है कि जो हम ये जोड़ रहे हैं कल अगले आने वाले पल के लिए, तो वो पल हमारे पास है भी या नहीं। इस तरह से जो ये घटनाएं हो जा रही हैं अचानक, तो इंसान को भागने तक का, अपनी जान तक बचाने का मौका नहीं मिल रहा। तो सोचिए, धन दौलत इकट्ठी करके कौन साथ ले जाएगा। देखिए दोस्तों, कितने घर वहाँ बह गए, कितनी सड़कें वहाँ टूट गई, कितने पुल वहाँ टूट गए, लेकिन जमीन वहीं की वहीं है, वो तो वहीं है ना, कोई किसी के साथ तो नहीं गई, या किसी ने लड़ झगड़ कर इतना पैसा कमा लिया है कि वो अपनी जमीन जो है वो अपने साथ लेकर जा पाया है आज तक। आपको लगता है ऐसा? फिर हम क्यों अपने आपसी जो है रिश्तों को बिगाड़ते हैं, क्यों भेदभाव को इतना बढ़ा देते हैं कि हम इंसानियत को ही कहीं ना कहीं ख़त्म कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ें, ये घटनाएं हमें सबक देने के लिए, सीखने के लिए, अगर कहीं कमी है तो उस ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, उसे उस कमी को दूर करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, हिमालय क्यों संवेदनशील है? हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पहाड़ों की संरचना, ढलान, नदियों का तेज प्रवाह और बदलता मौसम सभी मिलकर इसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन ने चुनौतियां और भी बढ़ा दी हैं। तापमान में बदलाव, ग्लेशियरों का पिघलना और मौसम की चरम घटनाओं का बढ़ता जोखिम हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। हमने विकास के नाम पर पहाड़ों में सड़कें बनाई, सुरंगें बनाई, बिजली परियोजनाएं स्थापित की और बस्तियों का विस्तार किया। विकास जरूरी है, लेकिन सवाल ये है, क्या विकास प्रकृति की क्षमता को समझकर हो रहा है? क्या नदी के प्राकृतिक रास्तों को पर्याप्त जगह मिल रही है? क्या निर्माण से पहले पहाड़ की भूगर्भीय स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है? अगर इन सवालों को नज़रअंदाज किया गया तो प्राकृतिक खतरा मानवीय आपदा में बदल सकता है। दोस्तों, मैं जानती हूँ, मैंने इसमें आपसे पहले भी बातचीत की थी कि किस तरह से जो हम ये विकास के नाम पे सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, न जाने किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़रूरी है विकास, लेकिन उसके पीछे कुछ खास बातें जो थी, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, और उसी नज़रअंदाजगी की वजह से आज हम इन घटनाओं से गुजरने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। तो ये बहुत ही खास बातें हैं। फिलहाल आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, क्योंकि जिंदगी का नाम है आगे की ओर चलते जाना।

दोस्तों किशोर कुमार की आवाज में आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये बहुत ही प्यारा सा गीत जी। दोस्तों कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और हमेशा हमें चलते ही रहना है, क्योंकि अगर हम रुक गए तो जिंदगी कहीं ना कहीं रुक जाएगी, ठहर जाएगी, और फिर हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे। दोस्तों बहुत ही खास आज का ये दिन आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार आप सभी मना रहे हैं। सनातन धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधते समय कर्मकांडी पंडित या आचार्य संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, जिसमें रक्षाबंधन का संबंध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। ये श्लोक रक्षाबंधन का अभीष्ट मंत्र है। येन वधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अभिवामि रक्षे माचाल मचल। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। हे रक्षे, हे राखी, तुम अड़िग रहना, अर्थात तू अपने संकल्प से कभी भी विचलित ना हो। दानवेंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया, तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। गुरु के मना करने राजा पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप कर पाताल लोक का राज्य बलि को दे दिया। तब बलि ने भगवान से पाताल लोक में उनके साथ रहने का वरदान मांगा। भगवान ने घर ना लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षाबंधन बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी जी। दोस्तों इसके आगे किस तरह से ये कहानी आज के दिन का रहस्य जरूर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एंजॉय करेंगे कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया, क्योंकि राखी का त्योहार है तो गाने भी स्पेशल ही होंगे आप सभी के लिए। जी दोस्तों, 91.2 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। इस खास अवसर को आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आके, और हम बात कर रहे हैं आज के दिन के कुछ खास रहस्यों के। जी दोस्तों, विष्णु पुराण के एक प्रसंग में कहा गया है कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर वेदों को ब्रह्मा के लिए फिर से प्राप्त किया था। भगवान हयग्रीव को वैदिक सनातन धर्म में विद्या और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस त्योहार का इतिहास पुराणों की कथाओं में मिलता है। जी दोस्तों, महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने चक्र से किया, तो उसका सिर काटने के बाद जब चक्र वापस श्री कृष्ण के पास आया, तो उस समय उनकी उंगली कट गई और भगवान की उंगली से रक्त बहने लगा। ये देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर भगवान गोविंद की उंगली में बांधा था, जिसको लेकर श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। इसी ऋण को चुकाने के लिए दुशासन द्वारा चीरहरण करते समय भगवान ने द्रौपदी की लाज रखी। तब से रक्षाबंधन का पर्व मनाने का इतिहास से ये जुड़ी कथा। जी दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुंदा हुआ है। सूत्र अविचिकता का प्रतीक है, क्योंकि सूत्र बिखरे हुए मोतियों को अपने में पिरोकर एक माला के रूप में एकाकार बनाता है। माला के सूत्र की तरह रक्षा सूत्र भी लोगों को जोड़ता है, रक्षाबंधन की अनूठी लोक परंपराएं। भारत में त्योहारों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उनका मूल भाव एक होते हुए भी उनका रूप जगह जगह बदल जाता है। रक्षाबंधन भी ऐसा ही पर्व है, त्योहार है, खूबसूरत सा पल है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे, और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

तो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। और बहुत ही खास बातचीत दोस्तों, रक्षाबंधन के इस पर्व पर हम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही जो नेपाल में हुई घटना उस पे भी हम नजर दौड़ा रहे हैं, उसकी और भी थोड़ा सा रुक करना जानना हमारे लिए, खास करके युवाओं के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, नेपाल, भारत और चीन से जुड़ा हिमालय एक साझा भौगोलिक और पारिस्थितिकी क्षेत्र है। पहाड़ों में ऊपर घटने वाली कोई घटना नीचे बसे क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकती है। नदियां सीमाएं नहीं पहचानती। एक पहाड़ी क्षेत्र में अचानक बढ़ा जलस्तर आगे चलकर मैदानी क्षेत्रों के लिए खतरा बन सकता है। यही कारण है कि नेपाल में आई इस आपदा के बाद भारत के कुछ सीमावर्ती इलाकों में भी सतर्कता बढ़ाई गई। एक पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन कई बार हम इतने स्वार्थी बन जाते हैं, इतनी सुख सुविधाओं के अंदर चले जाते हैं कि सब भूल जाते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन को विशेष सावधानी बरतनी पड़ी। इससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपदा प्रबंधन को सीमाओं से आगे बढ़कर क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता है। अब जरा सोचिए, अगर पहाड़ में कुछ घंटों के भीतर नदी का रास्ता बदल सकता है, सड़कें बह सकती हैं, पुल टूट सकते हैं और बस्तियों में पानी व मलबा घुस सकता है, तो क्या हमारी वर्तमान तैयारी पर्याप्त है? शायद नहीं। और यही इस पूरी घटना की सबसे बड़ी चेतावनी है। श्रोताओं, हिमालय बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ विकास कार्यों की जरूरत है। सड़कें चाहिए, पुल चाहिए, बिजली चाहिए, संचार चाहिए और लोगों तक स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाएं भी पहुंचनी चाहिए। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि विकास किस तरह का हो। क्या हम पहाड़ की क्षमता को समझकर निर्माण कर रहे हैं? क्या हम नदियों को के प्राकृतिक बहाव को पर्याप्त जगह दे रहे हैं? क्या सड़क और सुरंग निर्माण से पहले पहाड़ की भूगर्भीय स्थिति का पर्याप्त अध्ययन किया जा रहा है? क्या बस्तियों को ऐसे स्थानों पर बसाया जा रहा है जहां अचानक बाढ़ या भूस्खलन का खतरा कम हो? इन सवालों पर गंभीरता से विचार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि विकास रुकना समाधान नहीं है, लेकिन प्रकृति को नजरअंदाज करके विकास करना भी समाधान बिल्कुल नहीं है। तो संतुलन जो है दोस्तों बहुत जरूरी है और संतुलन को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या हम इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? इसी पे सोच विचार करने की जरूरत है, इसी बात पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो जो हम कहीं भी घर बना लेते हैं,

जो है नदियों नालों के पानी के बहाव को, जगह को हम घेर रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं दोस्तों। बहुत सारी जो नदियां हैं, जो नाले हैं, वो हमने बंद कर दिए क्योंकि हमें अपने घरों के लिए जगह नहीं है। तो हम घर मकान बनाने के लिए या अपनी ज़मीनों को बढ़ाने के लिए उस जगह को कम करते जा रहे हैं। तो नदियों का पानी है, माना कि इस साल बरसात कम हुई तो पानी कम आया तो हमने वहाँ घर बना लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कभी बरसात उस तरह से आएगी ही नहीं। उस तरह से पानी जिस तरह से नदियों में बहता है वो कभी आएगा नहीं, क्योंकि नदियाँ अपना जो क्षेत्र है दोस्तों वो लेकर ही रहती हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये हो सकता है कि वो जब अपनी दिशा बदल देंगी, दिशा को बदल कर कहीं और जाएंगी, तो फिर नुकसान सबका होगा। इसलिए प्रकृति से छेड़छाड़ करना अभी भी हमारे पास समय है। यदि हम प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें तो शायद कुछ हद तक हम इन मुश्किलों को कम कर सकते हैं, इस पे गौर कर सकते हैं। तो फिलहाल आइए दोस्तों, इन्हीं कुछ खास बातों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, क्योंकि बातचीत के साथ साथ मनोरंजन भी बेहद ज़रूरी है। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

0: बहने।
1: 91.1 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सभी जुड़े हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, आप सभी इंजॉय कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन के साथ साथ बातचीत का सिलसिला भी आप सभी इंजॉय कर रहे हैं। तो अपनी इस बातचीत का रुख करते हैं जानकारियों की ओर, क्योंकि कुछ जानकारियां भी हम सभी के लिए बेहद जरूरी हैं। दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का विभाग देश में नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए नोडल एजेंसी है। विभाग ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में व्यापक जन जागरूकता पैदा करने के लिए 60 सेकंड की 3 लघु फिल्मों को अंतिम रूप दिया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अधिकारिता विभाग मादक पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्परिणामों के बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करने और उन्हें शिक्षित करने के उद्देश्य से मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू कर रहा है। इस योजना के तहत विभाग ने 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया। इस प्रमुख अभियान का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करना और नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो है कुछ विशेष विषयों पर 3 लघु फिल्मों को अंतिम रूप दिया है। मादक पदार्थों के सेवन से जुड़े प्रारंभिक चेतावनी संकेतों और व्यवहारिक परिवर्तनों को समझना, इसमें साथियों का दबाव भी शामिल है। राष्ट्रीय नशा मुक्ति एवं टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन 1-4-4-4-6 और मादक पदार्थों के सेवन की प्रारंभिक पहचान, रोकथाम और उपचार में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका। इन फिल्मों का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, समय पर क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना और मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ परिवारों, शैक्षणिक संस्थानों और समुदाय द्वारा सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारी जो है आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और अब फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम में एक प्यारे से गीत की ओर।

एक बार फिर से रुक करते हैं अपनी इस खास बातचीत की ओर, क्योंकि आज का दिन बेहद खास एक भाई और बहन के रिश्ते के लिए समर्पित। जी दोस्तों, तो फिर से रुक करते हैं रक्षाबंधन त्योहार की ओर। दोस्तों, जैसे कि हमने कहा कि हर जगह का जो है अलग अलग तरीका होता है किसी भी त्योहार को मनाने का। हो सकता है हमारे यहाँ अलग तरीके से मनाते हैं, कहीं और किसी और तरीके से। तो अपने अपने नज़रिए या तरीके के परंपराओं के अकॉर्डिंग जो है हम त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन खास बात यही होनी चाहिए कि रिश्तों में प्यार और अपनापन, ये मिठास जो है इसी तरह से बरकरार रहे, चाहे तरीका कोई भी क्यों ना हो। तो बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की। जी, रक्षाबंधन से जुड़ी राजस्थान की सबसे चर्चित क्षेत्रीय परंपराओं में लंबा राखी का नाम लिया जाता है। ये विशेष रूप से मारवाड़ी और राजस्थानी परिवारों में प्रचलित रही है। जी दोस्तों, सामान्य राखी भाई की कलाई पर बांधी जाती है, जबकि लंबा राखी भाई की पत्नी यानी भाभी की चूड़ी या कंगन पर बांधी जाती है। लंबा राखी का डिजाइन भी सामान्य राखी से अलग होता है। इसमें अक्सर सजावटी लटकन, मोती, रंगीन धागे और अन्य अलंकरण होते हैं। इसे कलाई पर बांधने के बजाय चूड़ी पर इस तरह लगाया जाता है कि इसकी सजावटी हिस्सा नीचे की ओर लटकता रहे। इस परंपरा को एक खूबसूरत आभूषण की तरह देखना पर्याप्त नहीं है, इसके पीछे पारिवारिक रिश्तों को जोड़ने की भावना भी बताई जाती है। विवाह के बाद भाई के जीवन संगिनी परिवार का अभिन्न हिस्सा बनती है और लंबा राखी उसी पारिवारिक जुड़ाव को रक्षाबंधन के अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से सामने लाती है। दोस्तों, आज के समय की हम बात करें तो लंबा राखी राजस्थान या मारवाड़ी परिवारों तक सीमित नहीं रही है, आधुनिक है। आधुनिक बाजार और सोशल मीडिया के माध्यम से ये दूसरे समुदायों में भी लोकप्रिय हुई है। हालांकि इसकी ऐतिहासिक जड़ें मुख्य रूप से मारवाड़ी और राजस्थानी पारिवारिक परंपरा से जोड़ी जाती हैं। अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। दोस्तों, महाराष्ट्र के कोंकण तट पर और मुंबई के आसपास श्रावण पूर्णिमा का दिन एक और विशिष्ट रूप में दिखाई देता है, नारली पूर्णिमा के रूप में। ये विशेष रूप से मछुआरा समुदाय के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन समुद्र और जल से जुड़े देवता वरुण की पूजा की जाती है तथा नारियल अर्पित किया जाता है। मछुआरे सुरक्षित समुद्री यात्रा और मछली पकड़ने के अच्छे मौसम की कामना करते हैं। नारली शब्द का संबंध नारियल से है। इस दिन नारियल चढ़ाने की परंपरा के कारण इसे नारली पूर्णिमा कहा जाता है। ये पर्व मानसून के बाद मछली पकड़ने के नए मौसम की शुरुआत से भी जुड़ा है। दोस्तों, त्योहार से पहले नावों की मरम्मत और सजावट तथा मछली पकड़ने के जालों की तैयारी जैसी गतिविधियां भी कई जगहों पर देखने को मिलती हैं। खास बात यह है कि नारली पूर्णिमा और रक्षाबंधन एक ही श्रावण पूर्णिमा पर पड़ते हैं, इसलिए महाराष्ट्र में एक ही दिन परिवार में भाई बहन के रिश्ते का उत्सव और समुद्र पर निर्भर समुदायों के लिए प्रकृति एवं आजीविका के प्रति कृतज्ञता दोनों भाव साथ दिखाई दे सकते हैं। और भी बात करेंगे दोस्तों, और भी जानेंगे इन खूबसूरत सी बातों को, रहस्यों को, लेकिन उससे पहले आप सभी को फिर से लेकर चलेंगे कार्यक्रम के एक और प्यारे से खूबसूरत से गीत की ओर।

दोस्तों ये प्यारे प्यारे से गीत इस पर्व को, इस त्योहार को और भी खास बनाते हैं और भी इस प्यार को, इस रिश्ते को मजबूती देते हैं। तो बिल्कुल आप सभी के रिश्ते भी इस तरह से मजबूत रहें और ये प्यार इसी तरह से आज के दिन की तरह ही हमेशा के लिए बना रहे, ये उम्मीद करते हैं। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब आप सभी को लेकर चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। दोस्तों श्रावण पूर्णिमा का एक महत्वपूर्ण धार्मिक रूप दक्षिण भारत के कुछ समुदायों में अवनि अवितम या उपाकर्म के रूप में सामने आता है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सहित दक्षिण भारत के कई हिस्सों में ये वैदिक परंपरा से जुड़ा अनुष्ठान है। इसमें यज्ञोपवीत के नवीनीकरण और वैदिक कर्मकांडों का विशेष महत्व है। जी दोस्तों इस परंपरा को सीधे रक्षाबंधन का दक्षिण भारतीय संस्करण कहना उचित नहीं होगा। वास्तव में ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि एक ही तिथि अलग अलग समुदायों में अलग धार्मिक अर्थ ग्रहण कर सकती है। जहां एक परिवार भाई की कलाई पर राखी, कहीं राखी कलाई पर बनती है, कहीं चूड़ी पर सजती है, तो कहीं उसी पूर्णिमा को समुद्र को नारियल अर्पित किया जाता है। लंबा राखी अवनि अवितम कजरी पूर्णिमा बांध रहा होता है, वहीं किसी दूसरे समुदाय में उसी पूर्णिमा पर धार्मिक अध्ययन और यज्ञोपवीत से जुड़ा अनुष्ठान प्रमुख हो सकता है। दोस्तों उत्तर भारत में कजरी पूर्णिमा का रंग, श्रावण पूर्णिमा का एक क्षेत्रीय नाम कजरी पूर्णिमा भी है। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में श्रावण पूर्णिमा को कजरी पूर्णिमा के नाम के रूप में भी जाना जाता है। उसी बात की ओर हम रुक करें तो गुजरात की बात करते हैं। रक्षाबंधन देश के दूसरे हिस्सों में भी भाई बहन के स्नेह और पारिवारिक मिलन का पर्व है। गुजरात के जलोया में आयोजित रक्षाबंधन समारोह से स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्तर पर रक्षाबंधन को सामुदायिक और सांस्कृतिक उत्सव का रूप भी दिया जाता है। इसी तरह महाराष्ट्र में रक्षाबंधन को केवल भाई बहन तक सीमित ना मानकर प्रेम, विश्वास और रिश्तों के व्यापक उत्सव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कई जगहों पर राखी मित्रों और अन्य प्रियजनों को भी बांधने की परंपरा दिखाई देती है। एक पूर्णिमा अनेक रंग, इन सभी परंपराओं का स्वरूप अलग है लेकिन इनके पीछे एक सांझी भारतीय विशेषता दिखाई देती है। त्योहार स्थानीय जीवन से जुड़कर अपना अर्थ बदलता और विस्तार पाता है। रक्षाबंधन इसलिए केवल भाई की कलाई पर बांधा धागा नहीं है, ये परिवार, समुदाय, प्रकृति और सामाजिक संबंधों को जोड़ने वाली सांस्कृतिक समृद्धि भी है। आधुनिक समय में राखी ऑनलाइन भेजी जा सकती है, वीडियो कॉल पर रस्म निभाई जा सकती है और उपहार घर बैठे पहुंच सकता है, लेकिन परंपरा का मूल भाव आज भी वही है, एक दूसरे के सुख और कल्याण की कामना। तो आइए इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और अब आप सभी को लेकर चलते हैं एक और खास जानकारी की ओर। दोस्तों त्योहारों का समय चल रहा है और बहुत ही रौनक से भरा, जब भी त्योहार आते हैं तो घरों में खुशियां और चेहरे पे मुस्कान देखने को मिलती है। भाइयों को उम्मीद होती है बहनों के घर आने की और बहना को भी खुशी होती है कि भाई से मिलना है और उन्हें राखी बांधनी है। त्योहार कोई भी हो दोस्तों, प्रेम और अपना मन इन परंपराओं से और ज्यादा बढ़ जाता है। खैर एक जानकारी की ओर चलते हैं दोस्तों। सलो गुग्गा जाहरवीर मंदिर में वार्षिक मेले आज से यानी 28 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन को लेकर मंदिर समिति और स्थानीय लोगों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेले के दौरान धार्मिक कार्यक्रमों के साथ श्रद्धालुओं के लिए दिन रात लंगर, सफाई, पार्किंग, स्वास्थ्य सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंदिर पुजारी वेद प्रकाश ने बताया कि मेले का शुभारंभ 28 अगस्त को बाबा जी की छत्र एवं ध्वजारोहण कार्यक्रम के साथ होगा। जी दोस्तों, तो कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से 9:40 बजे के बीच जो है वो हो चुका है आज के दिन की अगर हम बात करें, और मेले के दौरान प्रतिदिन सुबह 7 बजे आरती होगी। जी दोस्तों, आप सभी जानते हैं और आप सभी मानते भी हैं धार्मिक जो हिमाचल है हमारा, वैसे भी धार्मिक स्थल है तो यहाँ धार्मिक को बहुत अहमियत दी जाती है और विश्वास हो तो कहते हैं ना कि सब संभव है। खैर इसी के साथ हम एक बहुत ही खास बातचीत भी कर रहे हैं दोस्तों नेपाल में हुई इस घटना की। तो नेपाल की ये घटना हिमाचल प्रदेश के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। हमारे पहाड़ भी संवेदनशील हैं और हमने कई बार देखा है कि अचानक भारी बारिश के बाद सड़कें बंद हो जाती हैं, नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ जाता है, भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित होता है। इसलिए हमें प्रकृति के संकेतों को समझना होगा। अगर प्रशासन किसी क्षेत्र को संवेदनशील घोषित करते हैं तो उसे हल्के में ना लें। बरसात के दौरान नदी नालों के किनारे सेल्फी लेने या वीडियो बनाने के लिए जाना जानलेवा हो सकता है और हमें ये एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। हमें विकास चाहिए, लेकिन ऐसे विकास से जो पहाड़ों की क्षमता को समझे और हमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझकर आगे बढ़े, तभी हम उस विकास को अपना सकते हैं। हिमालय हमें पुकार रहा है, मुझे समझो, मेरा सम्मान करो और मेरे साथ संतुलन बना कर चलो। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास और प्यारा सा मैसेज है और एक सबक है हम सभी लोगों के लिए जो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो आइए एंजॉय करते हैं क्योंकि समय भी अब धीरे धीरे जो है आप सभी से दूर जाने का होने को है। फिलहाल जाने से पहले एंजॉय करेंगे ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी इंजॉय कर रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आज का ये बहुत ही प्यारा सा और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम आप सभी ने इंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये सफर बहुत ही मीठा सा रहा, बहुत ही यादगार सर रहेगा आप सभी के लिए, ये उम्मीद करती हूँ। और अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, तो जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहन के हाथों में है स्नेह की डोर, बहन के हाथों में है स्नेह की डोर, भाई के जीवन में भरे खुशियों का दौर। जी दोस्तों, और जिस तरह से एक भाई अपनी बहन के रिस्पेक्ट करता है, उसी तरह से समाज में हर एक लड़की की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरह से लड़कियों के लिए भी लड़कों की रिस्पेक्ट बेहद ज़रूरी है। कई बार हम कहते हैं ना, अपने राइट्स के अंदर चलते मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं तो हम बदनामी की ओर चल पड़ते हैं। किसी का नाम बदनाम करने से पहले एक बार नहीं सोचते। तो जिस तरह से हम अपने घर परिवार में अपनों की रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह से हमें अपने आसपास, अपने समाज, अपने देश, चाहे विदेश में कहीं भी चले जाइए, इंसान होने के नाते एक दूसरे की रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी रक्षा बंधन आप सभी को रुचिका की तरफ से, पूरे रेडियो गुंजन परिवार की तरफ से। दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की, फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने।

रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, भाई बहन का रिश्ता है सबसे खास और शानदार, राखी के धागे में छिपी है विश्वास की मिठास, हर जन्म में बना रहे भाई बहन का साथ। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में प्रेम, खुशियाँ और अपनों का साथ लेकर आए। भाई बहन के इस खूबसूरत रिश्ते में हमेशा स्नेह, सम्मान और विश्वास की डोर मजबूत बनी रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। रेडियो गुंजन आपकी आवाज़, आपके

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ,
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है। और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।
4: हेलो, देख ले भाई कुछ इंतजाम होता उधर।
5: मैंने कितनी बार कही थी, मेरी सुनते कहाँ है ये?
4: हाँ तने बेरा बस सारी दुनियादारी का, इब की बार मदद कर दे बस। राम राम राम राम। 30,000 का होगा बीज, कैसे करूंगा इंतजाम बता। किसानी कैसे होती है पता भी है तने? ये लेन देन के काम बंदे संभालेंगे, तू घर का चूल्हा चौक देख ले वही बहुत है।
5: ये लेन देन ठीक से होगा तभी तो घर संभलेगा ना।
4: तने समझ है लेन देन की, ले पकड़।
5: पैसा सही तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ बचाना है, यही होवे ना लेन देन।
4: बोलन में और करण में बहुत फर्क हुआ है।
5: सही कह रहे हो, ये देखो 17,000 है मेरे पास।
4: पासबुक?
5: दूध बेच के सारा पैसा नहीं दिया था तेरे, थोड़ा जमा करवा दिए थे खाते में, अब बाकी पैसों का इंतजाम कर लो, हम दोनों मिलकर अपना भला बुरा नफा नुकसान सब देख सके हैं।
4: हाँ घनश्याम, तेरी बाण ने बचा लिए ना, तो भैंस बेचनी पड़ती, ईब लग गया है, ये असली किसान तो तेरी बहन है।
6: महिलाओं की आर्थिक निर्णयों में बराबर की भागीदारी, मतलब परिवार में उन्नति।
7: रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन,

0: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा, चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा। इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो, क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
1: नेहा।
2: हाँ जी।
1: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
2: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
1: अच्छा बाबा, बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
2: नहीं जाना।
3: ये भगवान, क्या जुलूम है,

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, भाई बहन का रिश्ता है सबसे खास और शानदार, राखी के धागे में छिपी है विश्वास की मिठास, हर जन्म में बना रहे भाई बहन का साथ। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में प्रेम, खुशियाँ और अपनों का साथ लेकर आए। भाई बहन के इस खूबसूरत रिश्ते में हमेशा स्नेह, सम्मान और विश्वास की डोर मजबूत बनी रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। रेडियो गुंजन, आपकी आवाज़, आपके अपने।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है।
2: और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।
4: हेलो, देख ले भाई कुछ इंतजाम होता उधर।
5: मैंने कितनी बार कही थी, मेरी सुनते ही कहाँ है ये।
4: हाँ तने बेरा बस सारी दुनियादारी का, इब की बार मदद कर दे बस। राम राम राम राम। 30,000 का होगा बीज, कैसे करूंगा इंतजाम बता। किसानी कैसे होती है पता भी है तने, ये लेन देन के काम बंदे संभालेंगे। तू घर का चूल्हा चौक देख ले, वही बहुत है।
5: ये लेन देन ठीक से होगा तभी तो घर संभलेगा ना।
4: तन्ना समझ है लेन देन की, ले पकड़।
5: पैसा सही तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ बचाना है, यही होवे ना लेन देन।
4: बोलन में और करण में बहुत फर्क हुआ है।
5: सही कह रहे हो, ये देखो 17,000 है मेरे पास।
4: पासबुक
5: दूध बेच के सारा पैसा नहीं दिया था तेरे, थोड़ा जमा करवा दिए थे खाते में। अब बाकी पैसों का इंतजाम कर लो, हम दोनों मिलकर अपना भला बुरा नफा नुकसान सब देख सके हैं।
4: हाँ घनश्याम, तेरी बाण ने बचा लिए ना, तो भैंस बेचनी पड़ती। ईब लग गया है, ये असली किसान ते तेरी बहन है।
6: महिलाओं की आर्थिक निर्णयों में बराबर की भागीदारी, मतलब परिवार में उन्नति।
7: रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन,

पर्व आइए मिलकर मनाएं हम सब एक साथ। आने वाले जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

0: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो। क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
1: नेहा।
2: हाँ जी।
1: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
2: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
1: अच्छा बाबा, बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
2: नहीं जाना।
3: ये भगवान, क्या जुलूम है।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगा हर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो इंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका। हाजिर हो गई हूँ एक बार फिर से आप सभी के साथ बहुत ही खास कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान को उड़ान के साथ। इस कार्यक्रम को आप सभी हर हफ्ते सुनते हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं, अधिवक्ता रूमा गुलेरिया जी। जी दोस्तों, तो आइए स्वागत करते हैं रूमा जी का इस हमारी बहुत ही खास बातचीत में, बहुत ही खास कार्यक्रम में। थैंक यू रुचिका जी। तो कैसे हैं रूमा जी आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ और अच्छा लग रहा है फिर से जुड़ना अपने दोस्तों के साथ और आपसे मिलके, तो और भी अच्छा लग रहा है
0: जी।
1: एक अलग किस्म की फ्रेशनेस जो है वो एटमोसफियर में आ गई है, तो अच्छा लग रहा है।
0: बहुत अच्छी बात है, जब हम खुश होते हैं, मन खुश होता है, तो जिंदगी और भी प्यारी लगने लग जाती है।
1: बिल्कुल
0: जी, तो रोमा जी, हमने पिछली कड़ी में बात की थी, जैसे कि हमारे दोस्त जानते ही हैं कि हर हफ्ते हमारे दोस्तों के लिए रहती है कुछ खास जानकारियाँ,
1: बिल्कुल
0: और हमने पिछली कड़ी में बात की थी छुट्टियों से जुड़ी, है ना।
1: बिल्कुल
0: कुछ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिन्हें कि मतलब कि कई बार जानबूझकर छुट्टी नहीं दी जाती है,
1: बिल्कुल
0: तो थोड़ा सा उस पर हम नज़र डालेंगे कि किस तरह से हमने उस बातचीत को लोगों तक पहुंचाया था, दोस्तों को अवेयर किया था। थोड़ा सा हम टच लेंगे उस बात का, उसके बाद हम आएंगे इस बातचीत से जुड़े कानूनों पर आधारित अपने अधिकारों पे। जी दोस्तों,
1: बिल्कुल रुचिका, पिछली बार जब हमने बात की थी तो मुझे याद है हमने एक तो स्कूलों में जो छुट्टियां होती हैं और बच्चे उनको किस तरह से इंजॉय करते हैं उसको कवर किया था, साथ ही साथ इन छुट्टियों का हमारे दैनिक जीवन में या हमारी डे टू डे लाइफ में क्या उसकी इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी हमने जिक्र किया था।
0: जी,
1: छुट्टियाँ हमें मिलती हैं तो आपको भी पता है कि हमारा जो मानसिक तनाव है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है, और उसके साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और जब छुट्टी मिलती है तो उस छुट्टी का हम अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो सोशल रीच है वो बढ़ती है, हमारा अपने रिलेटिव्स के साथ मिलना हो जाता है, दोस्तों के साथ हम मिलते जुलते हैं, आउटिंग हो जाती है, और जब ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं तो हमारा जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है। और सभी दोस्त जानते हैं जब हम फ्रेश होते हैं तो काम करने के प्रति जो हमारी रुचि है वो और बढ़ती है और अधिक ऊर्जा के साथ हम अपने काम को अंजाम देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा है दोस्तों रूमा जी ने, कि जब ये छुट्टियों की बात आती है तो चेहरे पे मुस्कान अलग सी ही आ जाती है, कि कुछ समय जो है माइंड को रिलैक्स करने का, थोड़ा सा अपने आप को भी रिलैक्स मोड पे लेके जाने का समय हमारी ज़िंदगी में एंटर करता है। तो वीकली एक दिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए हर किसी की लाइफ में।
1: और हम सभी संडे इंजॉय करते हैं
0: जी।
1: और जो सरकारी कर्मचारी हैं या विभिन्न निजी कंपनियां हैं वहां तो संडे को छुट्टी मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जहां पे हर एक व्यक्ति को संडे को छुट्टी नहीं मिल सकती है, जैसे कि हमारे अस्पताल हैं
0: जी।
1: अस्पतालों में मरीजों का आना जाना लगा रहता है, तो वहां के हर एम्प्लॉय को एक दिन ऐसा दिया जाता है कि वो छुट्टी कर सकें, अस्पताल का काम भी चला रहे, मरीजों की तीमारदारी जो है वो भी अच्छे से हो सके, तो इसलिए हर जगह छुट्टी का अलग अलग दिन भी मुकर्रर किए जाते हैं, और मेरे हिसाब से ये सबके लिए होना भी चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो दोस्तों, ये बहुत ही खास बातचीत आप सभी के साथ साझा की थी, और ये थोड़ा सा टच हमने इसलिए लिया ताकि आप उस बात से आज के इस बात को जो है वो रिलेट कर सकें, उसके साथ जोड़ सकें कि किन अधिकारों की हम बात कर रहे हैं और किस तरह से जो है हमारी ज़िंदगी में जो वीकली साप्ताहिक छुट्टी जो है वो ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए, रिश्तों को बनाए रखने के लिए भी कई बार बेहद ज़रूरी रहता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल आपने अक्सर सुना होगा, कई बार क्या होता है खासकर हम महिलाओं के जीवन में जो घरेलू महिलाएं भी हैं
0: जी,
1: हमारे रिश्तेदारी में कहीं पर कोई फंक्शन आ जाता है और घर के जो पुरुष सदस्य हैं या महिला भी अगर वो काम करने जा रही हैं तो अगर ऑफिस से उनको छुट्टी नहीं मिलती है तो कितनी टेंशन हो जाती है, मन कितना भारी हो जाता है कि हम अपने रिश्तेदार के यहाँ किसी फंक्शन पर भी नहीं जा पाए। तो इस तरह से भी हमारे कानूनों में प्रावधान है कि अगर आपको कोई ज़रूरी छुट्टी है या आप कभी बीमार पड़ जाते हैं तो तब भी आपके लिए छुट्टियों की व्यवस्था सरकार द्वारा अलग अलग कानूनों के माध्यम से की गई।
0: जी दोस्तों, तो अब हम बिना समय को बर्बाद किए कानूनों पे आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक तो बनता है। तो आज क्यों ना मनोरंजन की शुरुआत रूमा जी की फरमाइश के साथ की जाए, क्योंकि ये खुद भी बहुत ही प्यारे प्यारे से गीत गुनगुनाते हैं, तो इन्हीं की फरमाइश का गीत आप सभी तक पहुंचाएंगे।
1: कोई भी गीत सुना दिए दीजिए रुचिका जी, आप आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। जब भी मैंने गीत सुना है उसने मन को बहुत ही सुकून मुझे मिला है आपके चॉइस के गीतों से भी। तो आज ऐसा करते हैं, हर बार आप मेरी पसंद का गीत सुनाती हैं हमारे दोस्तों को, तो क्यों ना आज आप ही की पसंद का गीत सुन लिया जाए।
0: जी बिल्कुल, ये भी आप ही की फरमाइश है तो इसे भी पूरा करना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत से गीत को, उसके बाद फिर से वापस आते हैं अपने इस कार्यक्रम में खास बातचीत के साथ।

0: दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा सा गीत रुचिका ने हम सबको सुनाया है और मजा आ गया है। तो चलिए रुचिका जी, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं छुट्टियों के ऊपर।
1: बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, बातचीत भी बहुत ही मनोरंजन से भरी है और मनोरंजन भी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, और छुट्टियों की बात भी मनोरंजन से भरी ही
0: बिल्कुल
1: होती है।
0: बिल्कुल
1: तो आइए बढ़ते हैं अपनी बातचीत में आगे, और अब रुख करते हैं रोमा जी की ओर, जो इनके पास जानकारियों का पिटारा है उसे आप सभी तक पहुंचाते हैं। तो रोमा जी, जैसे कि हमने बात की कि जो छुट्टियों से जुड़े कुछ कानूनी अधिकार हैं,
0: जी।
1: है ना, तो ऐसे कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं जो हमारे दोस्तों के लिए जानना जरूरी है? कौन कौन से अधिकारों के बारे में जो है वो आप आज के इस कार्यक्रम में हमारे दोस्तों को बताने वाले हैं?
0: वैसे तो रुचिका जी, बहुत सारे प्रावधान हैं कानून के तहत जो हमारी छुट्टियों को नियंत्रित करते हैं,
1: जी
0: कर्मचारियों के लिए या व्यवसायियों के लिए या छोटे जो हमारे दुकानदार हैं, रेहड़ी फड़ी वाले हैं, सबके लिए एक दिन छुट्टी का जो है निश्चित किया गया है। तो इसमें बहुत सारे कानून हैं। पहला कानून जो है वो कारखाना अधिनियम 1948 के तहत है। उसके बाद दुकान एवं जो प्रतिष्ठान अधिनियम है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसके तहत जो है वो दुकानदारों के लिए या छोटे व्यवसायियों के लिए का छुट्टियों के जो है वो निर्धारण किया गया है। फिर इसके बाद महिलाओं के लिए विशेष छुट्टियों का जो है प्रबंधन किया गया है, जिसमें से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो है उसमें महिला की प्रसूति के बाद या उसके दौरान अगर उसको कोई दिक्कत आती है तो उसकी आराम की व्यवस्था को देखते हुए छुट्टियों का जो है प्रावधान इस अधिनियम के तहत जो है वो किया गया है। फिर इसके साथ साथ केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के तहत जो है वो कर्मचारियों की छुट्टियों को निर्धारण किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो है उसके तहत छुट्टियों का जो है अलग अलग छुट्टियों का जो प्रावधान किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे जो प्रावधान है कानून के तहत जो अलग अलग तरीके से अलग अलग कैटेगरी के कर्मचारियों को या व्यवसायियों को, दुकानदारों को, छोटे कर्मचारियों को जो है वो छुट्टियाँ निर्धारित करते हैं।
1: जी बिल्कुल दोस्तों। तो रूमा जी ने बताया कि ऐसे कौन कौन से अधिनियम हैं जिसके अंडर जो है वो छुट्टी से संबंधित है, खास करके छुट्टी से संबंध रख, जिसके अंतर्गत जो है एक कार्यकर्ता अपने लिए आवाज़ उठा सकते
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: और रुचि के कई बार क्या होता है ना, जब हम काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी हमें ज़रूरतें पड़ती हैं। हम अपनी जो छुट्टियां हैं, जैसे ऑन लीव हैं हमारे पास, कैजुअल लीव्स हैं, और भी छुट्टियों की जो कैटेगरी है वो भी जो है वो डिस्क्राइब की गई है इसमें।
1: जी
0: जैसे कैजुअल लीव है जो हमारे लिए साल में 12 छुट्टियाँ कर्मचारियों के लिए होती हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार किसी अर्जेंसी के अकॉर्डिंग जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो ले सकते हैं। इसमें मेडिकल लीव है, अगर कोई बीमार पड़ता है तो वो मेडिकल लीव ले सकता है। और इसके अलावा कंपनसेटरी लीव होती है। जैसे आप, कई बार क्या होता है कि हमें विषम परिस्थितियों में क्या होता है, छुट्टी वाले दिन भी हमें कई बार काम करना पड़ता है, तो उसको भी जो गवर्नमेंट है वो कंपनसेट करती है सरकारी कर्मचारियों को, तो वहाँ पे कंपनसेटरी लीव का भी प्रावधान है। इसके अलावा कई बार होता है हमारी सारी छुट्टियाँ मान लो ख़त्म हो गई हैं, तब भी हमें छुट्टियों की ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार
1: बिल्कुल
0: बीमारी की वजह से माता पिता बीमार हैं या बच्चों की पढ़ाई का इशू है, तो वहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव का जो है वो प्रावधान है। तो यहाँ पर भी छुट्टी दी जाती है, लेकिन ये जो छुट्टी होती है यहाँ पे जो कर्मचारी है उसको सैलरी या वेतन जो है वो उसको नहीं दिया जाता है, लेकिन उसकी जो नौकरी है, उसका जो भी कार्यकाल है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो
1: जी
0: छुट्टियों के तो प्रावधान बहुत हैं, लेकिन कई बार आपने पहले भी कहा था कि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनको छुट्टियों के लिए परेशान किया जाता है, उनको छुट्टियां नहीं मिलती हैं, कई बार बहुत ज़रूरत होने के बावजूद भी छुट्टियां नहीं मिलती हैं। तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए हमारी लिए सरकार ने छुट्टियों के लिए किस प्रकार के प्रावधान किए हैं।

0: साल में कुछ छुट्टियां होती हैं जो कर्मचारी के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई होती हैं। अगर आपकी बाकी की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं तो आप अर्न लीव से छुट्टी ले सकते हैं और इसके लिए आपको जो वेतन है वो मिलता रहता है। पैटर्निटी लीव का भी प्रावधान आ गया है। मैटरनिटी लीव की हमने बात की। पैटर्निटी लीव में पुरुषों को जब जैसे माँ को बच्चा होने पे छुट्टी मिलती है वैसे ही पिता का भी अधिकार है उनको छुट्टी मिले, तो यहाँ पे पुरुषों के लिए 15 दिन की छुट्टी का प्रावधान है ताकि वो अपनी पत्नी और बच्चे की जो है वो देखभाल कर सके। और भारतीय जो कंपनियों में वेतन संबंधी जो अधिकांश शिकायतें होती हैं ना वो वेतन से होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर अगर कोई इम्प्लॉय छुट्टी कर लेता है तो उसकी जो है
1: सैलरी
0: सैलरी जो
1: जो
0: है
1: है वो
0: वो
1: कट हो
0: काट ली
1: जाती
0: जाती
1: है
0: है।
1: जी।
0: तो इसी कड़ी में जो है ये प्रावधान किए गए हैं कि अगर व्यक्ति के पास उसकी छुट्टियां पेंडिंग है तो वो उसकी सैलरी से जो है वो वेतन ना काटा जाए। इसमें से जो हमारे अर्न लीव हैं, अर्जित अवकाश जिसको हम बोलते हैं, तो ये केंद्रीय रूप से जो है वो अनिवार्य किए गए हैं, जबकि अन्य राज्यों में ये कई जगहों पे ये कानून जो है ये जो छुट्टियां हैं उनका प्रावधान नहीं होता है। और रुचिका जी, रही बात कार्य अवधि की, तो हर एक कार्यालय का अपना जो है नीतियां होती हैं, उनके अपने रूल्स होते हैं
1: जी
0: कि कर्मचारी का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा, कितने समय तक वो काम करेगा। और छुट्टियों के प्रबंधन के बारे में जो है वो कारखाना अधिनियम के तहत जो भी इम्प्लॉयर है, जो भी वहाँ का मालिक है, वो छुट्टियों का पैटर्न जो है वो निर्धारित कर सकते हैं। अगर मान लो कारखाने में या किसी भी मिल में या कहीं पे भी जो काम का जो है वो शिफ्टों में किया जाता है, तो उस हिसाब से भी कर्मचारियों की जो है छुट्टियाँ वो हैं निर्धारित की जाती हैं। और समय सीमा जो है वो अलग अलग रहती है, लेकिन 9 घंटे से अधिक किसी भी इम्प्लॉय से काम नहीं लिया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति जो है वो अधिक काम करता है तो उसका ओवर टाइम जो है वो उनको पे किया जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं छुट्टियों की, तो भारतीय श्रम कानून के अनुरूप जो है अवकाश नीति बनाना और उसे सटीक तरीके से ऑडिट के लिए वेतनमान में बदलना और ऐसे काम हैं जिनमें विशेषज्ञों की मदद लेना जो है वो बहुत फायदेमंद होता है। मुख्य रूप से जो हमारे वैधानिक अवकाश हैं, अर्जित अवकाश हैं, कैजुअल लीव हैं, बीमारी के लिए या मातृत्व की जो छुट्टी है, पितृत्व के लिए जो छुट्टियां निर्धारित की गई हैं निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए, इनको भी अनिवार्य किया गया है। और ये छुट्टियां जो हैं कंपनी की आंतरिक नीति के माध्यम से जो हैं वो प्रदान की जाती हैं। और इसमें जो है जो अर्जित अवकाश होते हैं हमारे जो अर्न लीव हैं इसके लिए जो है वो कार्य दिवस पे के ऊपर निर्भर करता है, आपने कितने दिन तक कार्य किया। श्रमिक कैलेंडर वर्ष के अकॉर्डिंग जो है वो 240 दिन तक जो है एक श्रमिक को या एक कर्मचारी को जो है वो काम करना चाहिए, और इसके लिए प्रत्येक 20 दिन के बाद एक अर्जित अवकाश मिलता है। मानो इस महीने मैंने 20 दिन तक काम कर लिया तो मेरी एक अर्न लीव जो है वो निर्धारित हो जाती है। और पहले जो था ये था रुचिका की 240 दिन जो था वो एक कर्मचारी जब काम कर लेता था तो उसे एक अर्जित अवकाश मिलता था, लेकिन अब जो है इसकी जो समय सीमा जो है वो अब कम कर दी गई है। अब 180 दिन अगर कोई व्यक्ति काम कर लेता है तो उसको जो है वो एक अर्जित अवकाश मिलता है। इसी प्रकार मैटरनिटी लीव पहले कुछ संस्थानों में, निजी कंपनियों में जो था वो महिलाओं को 60 दिन से अधिक या 45 दिन से अधिक जो है वो मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी, लेकिन अब जो है समूचे भारतवर्ष में मैटरनिटी एक्ट जो अमेंडेड एक्ट अभी लागू हुआ है उसके तहत 180 दिन की जो छुट्टी है हर एक कर्मचारी को है। हमने पिछली बार भी बात करी थी जो हमारी घरेलू सेविकाएं होती हैं उनके लिए भी छुट्टी का प्रावधान है। अगर कोई
1: होना चाहिए
0: घरेलू
1: बिल्कुल।
0: सेविका जो है वो मैटरनिटी लीव पे जाती है तो वो भी जो है वो उसको भी 180 दिन का जो है अवकाश मिलता है। और उसमें जो व्यक्ति उस महिला कर्मचारी से, चाहे वो घर का काम करने वाली ही कर्मचारी क्यों ना हो, उसको पूरा वेतन जो है वो उस अवधि के दौरान का दिया
1: दिया
0: जाता है।
1: जाता है
0: लेकिन हमारे जो लोकल लोग हैं, ज़्यादातर लोगों को ये कानून पता नहीं है, तो कई बार जो हैं हम लोग ऐसे छोटे कर्मचारियों को डराते भी हैं, हम नौकरी से निकाल देंगे, किसी और को रख लेंगे। और ज़्यादातर मैंने देखा है, हमने पहले भी बात कहा था, जो हमारी घरेलू सहायिकाएँ सहायिकाएँ सहायिकाएँ होती हैं उनको हम लोग जो हैं वो

0: देते ही नहीं हैं या देना ही नहीं चाहते हैं।
1: बिल्कुल जी। तो दोस्तों रूमा जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि कारखाना अधिनियम में किस तरह से जो है ये अधिकार रहता है या किस तरह से इसका प्रोसेस रहता है। तो इसके बाद आते हैं दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम की ओर। तो इसके अंतर्गत किस तरह से जो है कर्मचारियों के लिए प्रावधान रहते हैं छुट्टी से रिलेटेड या अपनी इस सर्कल को बनाने से रिलेटेड।
0: रुचिका जी, वैसे तो आपने देखा होगा कि हमारे जो बाजार हैं या जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है ज़्यादातर बंद नहीं होते हैं,
1: जी
0: लेकिन अलग अलग बाजार का जो है वो अलग अलग रवैया
1: रूल्स
0: होता
1: रहते
0: है,
1: हैं।
0: उन अपना उनका व्यापार मंडल होते हैं, वो अपने हिसाब से छुट्टी का निर्धारण करते हैं। और कई जगह पे जो है बाजार जो है वो संडे को बंद होते हैं, कई जगह किसी ने बुधवार अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो छुट्टी का निर्धारण किया है, ताकि दुकानदारों को, छोटे कर्मचारियों को, रेड़ी फड़ी वालों को भी छुट्टी मिल सके। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि इनकी छुट्टी संडे की बजाय किसी और दिन होती है। और यहाँ पे जो हैं दुकानदार हैं, अगर उनकी हम बात करें तो ये अपनी मर्ज़ी से एक दिन छुट्टी करते हैं। जो भी हमारे त्यौहार हैं, सामाजिक त्यौहार हैं, घर में शादी फंक्शन कुछ भी है, तो ये अपने हिसाब से छुट्टी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इनको वाद्य नहीं कर सकते हैं कि छुट्टी वाले दिन भी ये बाजार खोलें।
1: जी
0: कई बार आपने देखा होगा कोई फंक्शन आते हैं, जैसे अभी कुछ समय बाद दीपावली, करवा चौथ, दशहरा, कई प्रकार के फंक्शंस आते हैं, तो ऐसे में ये अपनी इच्छा से जो है वो अपने प्रतिष्ठान को पूरा हफ्ता खुला रखते हैं और कर्मचारियों को जो है वो अपने काम के लिए बुलाते हैं। लेकिन जो कर्मचारी हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, त्यौहार तो उनके लिए
1: उनके
0: भी आता है,
1: लिए
0: तो
1: भी
0: एक विशेष जो दुकान का जो मालिक है या प्रतिष्ठान का जो मालिक है वो उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि उस कर्मचारी का त्यौहार या उसके लिए जो फंक्शन आ रहे हैं उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, तो वो इस हिसाब से काम का संचालन करते हैं और व्यापार मंडल के साथ मिल के सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक एम्प्लॉई, जो भी कर्मचारी या जो भी वहाँ पे मजदूर काम कर रहा है, वो अपना त्यौहार खुशी
1: खुशी
0: से
1: से
0: अपने
1: मनाए।
0: परिवार के साथ मना सके।
1: जी
0: और इसमें एक और भी प्रोविज़न रहता है कि जैसे हमने बात करी कि छुट्टी जब मिलती है तो उसको छुट्टी का भी वेतन मिलता है, यहाँ पे जब हम ओवर टाइम करता है कोई भी एम्प्लॉई, दुकानदार का, मजदूर या जो भी है, तो इनको विशेष भत्ते जो हैं इस दौरान दिए जाते हैं मालिक की ओर से या विशेष जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनकी ओर से।
1: जी दोस्तों, तो खास करके हम जो ये दुकान एवं प्रतिष्ठान की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादातर जो है वो अपने ही हाथों में चीज़ें रहती हैं, है ना।
0: बिल्कुल
1: अपना एक सेल्फ बिजनेस बोल सकते हैं
0: बिल्कुल
1: और वो जो है लोगों को रोज़गार, जो लोग मतलब कि
0: बिल्कुल
1: ज़रूरतमंद होते हैं। लेकिन कई बार ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जो है दोस्तों अधिकारों से हट के जो है लोगों का शोषण करते हैं, जो काम के बदले में उनकी मजबूरी का फायदा उठाते
0: बिल्कुल
1: हैं और उन्हें ना तो कोई छुट्टी दी जाती है ना उन्हें आराम करने के लिए समय दिया जाता है। तो ये इसी बात के लिए हम आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं कि अगर किसी का शोषण किया भी जाता है, किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि हर कोई इंसान है, चाहे वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं या कोई किसी के मतलब उनके अंडर काम कर रहे हैं, हर किसी के लिए रूल्स जो है वो एक समान होते हैं। तो थोड़ा सा हमें इंसानियत होने के नाते जो है सभी की सिचुएशन को, सभी की ज़िंदगी को जो है वो बैलेंस करके चलना बेहद ज़रूरी है।
0: बिल्कुल। और देखिए, ये जो छोटे मजदूर तबका है या छोटे कर्मचारी जो दुकानों में काम कर रहे हैं, ये भी बीमार पड़ते हैं,
1: बिल्कुल
0: इनके घर में भी कोई सदस्य बीमार पड़ सकता है, तो ऐसे में ये अगर छुट्टी लेते हैं, ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कि किसी भी कर्मचारी ने रिटर्न में अपने मालिक से छुट्टी ली होगी। और ज़्यादातर प्रतिष्ठानों के जो मालिक होते हैं या एम्प्लॉयर हैं वो अपने कर्मचारियों को ओरली बोलने पर भी छुट्टी दे देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों की जो वेतन है या जो भी उनको पगार दी जाती है, मजदूरी दी जाती है, वो नहीं काटते हैं। लेकिन हाँ, कुछ एक मामलों में ऐसा हो जाता है कि कर्मचारी बहुत ही समय तक बिना बताए जब ऐसे
1: ज़्यादा
0: छुट्टी
1: बिल्कुल
0: करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो उस कर्मचारी को निकाल देते हैं। लेकिन अगर ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने नियोक्ता को पहले से ही इन्फॉर्म करूँ कि मैं बीमार हूँ या फिर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मुझे इतने समय की छुट्टी चाहिए, तो वो लिखित में वो वहाँ दे सकते हैं और नियोक्ता ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसको उस काम से ना निकाला जाए, उसको बेरोज़गार ना किया जाए। लेकिन ज़्यादातर छोटे प्रतिष्ठानों में ऐसा होता है कि एम्प्लॉई अगर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते काम पे नहीं आता है तो उसकी जगह नया बंदा रख लिया जाता है, और जब वो आता है तो वो बिल्कुल एक तो बेरोज़गार हो जाता है, दूसरा अपनी बीमारी या किसी भी परिवार के सदस्य की बीमारी या किसी और परेशानी के कारण उसकी समस्याएँ और भी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर व्यापार मंडल को ये सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी कर्मचारी को अगर उसके पास कोई सॉलिड रीज़न है, उसने अपने एम्प्लॉई को बताया है, तो उसको काम से ना निकाला जाए।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो ये बहुत ही खास बातें आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान से अपने रेडियो दोस्त रुचिका और रूमा जी के साथ। तो आइए इस बातचीत को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और आप सभी को लेकर चलते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की, और उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: दोस्तों, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारी इस खास बातचीत के साथ। और हम बात कर रहे हैं जो एक साप्ताहिक को छुट्टी का अधिकार जो हर एक कार्यकर्ता के लिए बेहद जरूरी है, तो उससे जुड़े कुछ अधिकारों की जानकारी जो है वो हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम सिर्फ काम की तरफ ध्यान देते हैं और हमारे साथ कुछ अन्याय होता भी है तो हम थोड़ी सी नोक झोंक करके उसमें शांत हो जाते हैं, और वहाँ पे हमें अगर निकाल भी दिया जाता है तो हम थोड़ी देर गुस्सा भी कर लेते हैं, थोड़ा सा नाराजगी भी जता लेते हैं, लड़ भी लेते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि शायद यही सही है ना, तो अपने
1: मन मार के हम बैठ
0: हाँ
1: जाते हैं
0: वही
1: और
0: चीज़
1: कोई
0: है।
1: भी एक्शन नहीं लेते हैं।
0: बिल्कुल, तो एक्शन लेना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं अगर वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं तो कल को वो किसी और के साथ गलत ना, किसी और का शोषण ना करे, किसी और की मजबूरी का फायदा ना हो, किसी और के साथ अन्याय ना हो, इसलिए आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है।
1: और कई बार रुचिका हमने देखा है कि मैंने महीना भर किसी के साथ काम किया, किसी ठेकेदार के साथ काम किया, किसी दुकान पे काम किया और किसी वजह से नियोक्ता के साथ झगड़ा हो गया या कोई भी रीज़न रहा हो, हमें काम से निकाल दिया। तो कई बार कर्मचारी हमारे पास, जैसे कंज्यूमर फॉर्म है तो कई प्रकार के केसेस आते हैं जहाँ पे कर्मचारियों को उनके किए गए काम का जो है वो मुआवजा या वेतन या जो भी पगार है उनकी वो नहीं दी जाती है।
0: जी
1: तो इस तरह के कई प्रकार की अनियमितताएं जो हैं वो हमारे काम के दौरान पाई जाती हैं, देखा जाता है। तो ऐसे में जो कर्मचारी है उसको अपने हित के लिए, कम से कम जो काम किया है उसके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि जो उसने मेहनत किया उसका फल उसको मिले।
0: बिल्कुल, तो रूमा जी हम अभी आपने बात की थी कुछ समय पहले कि जो हमारी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो होती है, जब हमारे हमारे लिए एक शेड्यूल होता है कि पूरे साल में हम इतनी छुट्टियां कर सकते हैं, इतनी
1: बिल्कुल
0: जो कैजुअल लीव्स हैं या सिक लीव्स हैं, मतलब एक अलग पैटर्न होता है, ये आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की तरफ जाते हैं, जब सारी छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, तो उसका थोड़ा सा हमने बात की थी, लेकिन थोड़ा सा और उसको हम जानते हैं, गौर फरमाते हैं उससे किस तरह से ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद रहती है।
1: देखो रुचिका, केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के तहत जो है EOL यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की जो है वो व्यवस्था की गई है। कई बार क्या होता है रुचिका, हमें कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। मेडिकल लीव, हम मानो मैं बीमार हो गई हूँ, मेरे पास कुछ लिमिटेड मेडिकल लीव है, मैंने वो भी ले ली, मेरे पास अर्जित अवकाश थे वो भी मैंने ले लिए, उसके बाद जो हमारी कैजुअल लीव हैं वो भी मैंने ख़त्म कर दी हैं, लेकिन फिर भी मानो मैं बीमार हूँ या मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है और मुझे उसकी हेल्प करनी है, या फिर मेरा बिल्कुल बच्चा छोटा है मेरे घर में, या कोई बुज़ुर्ग है जिसकी केयर के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है और मुझे उसकी केयर करनी है, मुझे उसकी ट्रीटमेंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अपने कार्यालय में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो छुट्टी होती है इसके लिए वेतन नहीं मिलता है, लेकिन आपके पास छुट्टी का जो अधिकार रहता है, क्योंकि समस्याएं सभी की हैं,
0: सभी की होती
1: और
0: है।
1: देखिए जब मैं काम पे आ रही हूँ, मुझे पता है मेरे घर में कोई समस्या चल रही है, मेरे घर में कोई बुज़ुर्ग है, बीमार है, या मेरा छोटा बच्चा है जिसको केयर की ज़रूरत है और घर में कोई देखभाल वाला नहीं है, या फिर मेरे बच्चा मानो अभी बड़ा हो गया है, उसके एग्ज़ाम हैं, उसकी हेल्प के लिए मुझे उसके साथ होना ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास कोई भी छुट्टी नहीं बची है, तो मैं अपने नियोक्ता को या कार्यालय को जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए जो है मैं अप्लाई कर सकती हूँ। इस जो छुट्टी में जो मुख्य बातें ये होती हैं कि इसमें एक तो आपको वेतन नहीं मिलता है और इसमें अवधि की सीमा जो है इस बात पर निर्भर होता है कि आपकी नौकरी स्थायी है या अस्थायी है। ये जो लीव है ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के बेस पे मिलती है या फिर बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी मिल सकती है, मगर अगर आपने बच्चे के लिए ही छुट्टी लेनी है तो तब आपको मेडिकल देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कार्यालय में या जो भी आपका विभाग है वहाँ पे आप इस छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं, और ये छुट्टी आपको कम से कम 5 साल तक मिल जाती है। 5 साल तक आप ये छुट्टी ले सकते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रही हैं, आपको पढ़ाई करनी है नौकरी के साथ साथ, तो आप स्टडी लीव भी इसके तहत आप ले सकते हैं और यहाँ पे आपको वेतन नहीं मिलेगा, ये शर्त रहेगी। लेकिन अगर मानो आपने 2 साल की या 5 साल की छुट्टी ले ली, तो 5 साल के बाद आप आराम से आके ये जो
0: ज्वाइन कंटिन्यू
1: अपनी,
0: कर
1: हाँ
0: सकते
1: कंटिन्यू
0: हैं,
1: कर सकते हैं, और जब से आप अपनी ज्वाइनिंग देंगे तभी से आपको जो
0: वेतन
1: है वो
0: मिलना
1: वेतन मिलेगा।
0: जी।
1: इसके अलावा कुछ विशेष बीमारियां हैं, जैसे कुष्ठ रोग है, कैंसर है, या फिर मानसिक बीमारी में किसी भी प्रकार का जो इलाज चल रहा है, या आपके परिवार के किसी सदस्यों को इस तरह की समस्या है, आप उसकी केयर करने वाले हैं, तो आपको तब भी ये जो है वो छुट्टी मिल सकती है।
0: जी तो बिल्कुल दोस्तों, इस तरह से जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है हम ले सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें शर्त ये है कि हमें वेतन नहीं मिलेगा, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा हम वो बोलते हैं ना, जब हमें जानकारी नहीं होती तो हम वहाँ भी अपने राइट्स के लिए लड़ने खड़े हो जाते हैं कि नहीं हमारी तो ये मजबूरी थी, अब बीमार होना कोई हमारे हाथों में तो नहीं था,
1: बिल्कुल
0: तो हमें वेतन तो मिलना चाहिए। लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला पर्सन ही गलत है, कई बार हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं।
1: बिल्कुल। और रुचिका, कई बार क्या होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, अचानक से सर्जरी हो गई या कुछ हो गया, और मेरे पास मेडिकल और CL या बाकी छुट्टियां नहीं बची हैं, तो ऐसे में मैं बिना इंटीमेशन के अगर छुट्टी कर लेती हूँ, और ठीक होने के बाद जब मैं वहां पे जाती हूँ कार्यालय पे, तो यहाँ पे जो हमारा नियोक्ता है या जो हमारा जो भी बॉस है, वो हमारी उस छुट्टी को जो हमने बिना इंटीमेशन के दी है, एक रीज़न देके, मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर जो भी कारण रहा हो, वो कारण, लॉजिकल कारण बताकर, हमारा जो नियोक्ता है या जो भी सरकार है, हमारी उस छुट्टी को जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट कर सकते हैं।
0: जी
1: ऐसा नहीं है कि अगर आप, कई बार ऐसा होता है, सुनने में आता है न्यूज़पेपर्स में भी, इश्तिहार सरकार छाप देती है कि फलां कर्मचारी इतने दिन से कार्यालय से बिना बताए जो है वो नदारद है, वो नहीं आ रहा है, तो अगर उसने सही इतने समय में आके हमें रिपोर्ट नहीं किया तो उसको कार्यालय से निकाल दिया जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसी विषम परिस्थितियां हो सकती हैं कि वो नोटिस भी उस कर्मचारी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है रोज़ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, या उस तक लेटर हो सकता है कार्यालय ने उसको घर पे लेटर भेजा हो, लेकिन किन्हीं विषम परिस्थितियों में उसको ना मिला हो, तो जब भी वो ठीक होता है या विद इन टाइम वो अगर वहाँ आ जाता है, तो उसकी जो छुट्टी है जो उसने बिना नोटिस दिए कर ली है, उसको जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में चेंज किया जा सकता है, और उसको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन शर्त यहाँ पे भी वही रहेगी कि उसको वेतन
0: वेतन
1: नहीं
0: नहीं
1: मिलेगा,
0: दिए
1: और
0: जाएंगे
1: एक सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे अपने जो भी कार्यालय है वहाँ पे उसको सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाना पड़ेगा।
0: जी दोस्तों। तो आप सभी ने जाना कि किस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है हमारे लिए फायदेमंद रहती है, या किस तरह से हम इस प्रोसेस को जो है फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर रहकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझकर। तो बिल्कुल इसी बातचीत पे हम फिर से वापस आएंगे, लेकिन एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ लेकर कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान। और इसी तरह उड़ान भरते रहिए हौसलों के साथ और जानते रहिए आपके हित में सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों के बारे में।
1: जी दोस्तों, तो बहुत ही खास बातचीत आज के कार्यक्रम में आप सभी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अपने अधिकार जानना बहुत जरूरी है। लेकिन कहने के लिए छोटी सी बात है कि हमारे अधिकार क्या क्या है, लेकिन जब से रूमा जी हमारे साथ जुड़े हैं तब से हम ये देख रहे हैं कि पता नहीं कितने ही अधिकार हैं जो हमारे लिए बनाए गए हैं, जो हमारे लिए हैं, लेकिन हम अनजान हैं उन अधिकारों से, अपने ही बारे में हम जानते नहीं हैं।
0: बिल्कुल सही कहा रुचिका आपने, क्योंकि हम काम के बारे में तो जानते हैं लेकिन हमारे पास अधिकार भी हैं, और सरकार ने उन अधिकारों को हमारे लिए सुनिश्चित किया है, हमारी सेफ्टी के लिए बनाया है। इनके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती।
1: बिल्कुल। तो रूमा जी, हम जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, मतलब छुट्टियों की
0: छुट्टियों
1: बात कर
0: की
1: रहे हैं,
0: जी
1: तो अक्सर कई बार क्या होता है कि जैसे मुझे ज़रूरत है 2 महीनों की छुट्टियों की, कुछ एमरजेंसी है, तो मैंने उस स्पेस में छुट्टियों के लिए लीव जो है लिखित में, मतलब रिटर्न में मैंने ले ली और मुझे अप्रूव भी हो गई है, ठीक
0: बिल्कुल
1: है। तो उसके बीच में अक्सर कई बार ऐसा होता है कुछ इमरजेंसी आ जाती है या मेरे काम से रिलेटेड कोई काम हो, तो वहाँ जो है वो ज़रूरत, मतलब कि मेरी ज़रूरत है ऑफिस में या कहीं भी, हमारे जो भी वर्कर्स हैं, तो
0: जी
1: हमारा एक वो रहता है कि हम तो छुट्टी पे हैं और हमारा जाना शायद ज़रूरी नहीं है, भले ही हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमारे अंदर से ये बात निकल रही है। तो वहाँ
0: हम तो
1: किस
0: छुट्टी
1: तरह
0: पे हैं, हमें जाने की
1: से
0: जरूरत नहीं है।
1: जी, तो वहाँ किस तरह से प्रोसेस रहता है?
0: देखिए रुचिका जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने तो छुट्टी ले रखी है, मैं क्यों जाऊं,
1: जी
0: लेकिन मेरे हिस्से का काम कौन करेगा। तो विषम परिस्थितियों में अगर बहुत ही अर्जेंसी है और सरकार को आपकी ज़रूरत है, आपको आपके आगे वो काम करना है, तो सरकार किसी भी समय आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, कैजुअल लीव या फिर जो आपकी अर्न लीव है उसको कैंसिल कर
1: कैंसिल कर
0: सकती
1: सकते
0: है और आपको वापस काम पे बुला सकती है, और इसके लिए आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेडिकल लीव में थोड़ी सी एक्सेप्शन है। अगर आपका सर्जरी हुई है, आप किसी बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, मानो कैंसर या टीवी या कुष्ठ रोग या कोई ऐसी बीमारी जिसके तहत आपका चलना फिरना मुश्किल हो गया है, उस परिस्थिति में सरकार आपकी छुट्टी कैंसिल नहीं कर सकती है। लेकिन मानो आपने छुट्टी ली है बच्चे की पढ़ाई के लिए, घर में बुजुर्गों की देखभाल के लिए, बच्चे के पालन पोषण के लिए, तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार के पास कुछ ऐसा काम आ गया है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, मानो कई बार हमने विभागों में देखा है ऑडिट वाले आ जाते हैं
1: जी,
0: और
1: डॉक्यूमेंटेशन अब जो
0: सारा कुछ
1: इंसान
0: है,
1: कर रहा होता है उसे ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होता है।
0: बिल्कुल, तो उस दौरान जो है वो आपकी ज़रूरत रहती है, तो सरकार आपकी छुट्टी आपको इंटीमेट करके बुला सकती है, कैंसिल कर सकती है, और
1: जी
0: उसके लिए आप मना नहीं कर सकते हैं कि मैंने तो छुट्टी ली थी,
1: जी
0: प्री अप्रूव थी और अब मुझे काम पे नहीं जाना है, तो ऐसा नहीं है। हर परिस्थिति का जो है वो समाधान जो है गवर्नमेंट को रखना पड़ता है, और ये सरकारी कर्मचारियों के मामले में ज़्यादातर होता है कि कई बार उनकी छुट्टी जो है वो कैंसिल हो जाती है। कई बार ऐसे भी देखने में आता है कि मेरी बहुत सारी अर्न लीव पड़ी हैं और मैंने परिवार के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया है और मैं यहाँ से फॉरेन कंट्री निकल गई हूँ, लेकिन यहाँ पे सरकार को मेरी ज़रूरत पड़ गई है, तो मुझे बीच
1: जी,
0: में वो ट्रिप छोड़ के
1: छोड़ के
0: वापस
1: आना
0: आना
1: पड़ेगा।
0: पड़ेगा।
1: जी
0: तो ऐसा है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मुझे छुट्टियाँ मिल रही हैं तो मैं इस्तेमाल करूँ, अपने काम अपने छोड़ के आ जाऊँ। छुट्टी से पहले

0: और एक और विशेष नियम रहता है, मानो आप मेडिकल लीव पे चले गए हैं या आपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लीव ले ली है, इस दौरान क्या होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं, मेरा बच्चा बाहर पढ़ रहा है, मैं वहाँ चली गई हूँ और वहाँ पे मैं कोई पार्ट टाइम काम कर रही हूँ, तो छुट्टी का एक सरकारी कार्यालय कार्यकाल के
1: नियम
0: दौरान
1: भी
0: ये नियम है, आपने जिस उद्देश्य से छुट्टी ले ली है उसी उद्देश्य पे उसका खर्च होना चाहिए। अगर आप कहीं और काम करते हैं तो आपको भुगतान करना पड़ सकता है, तो ये भी
1: जी
0: ध्यान रखें कि अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है या कोई भी छुट्टी लेके आप दूसरी जगह भी बेनिफिट ले रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: तो उसका भी भुगतान हमें करना पड़ सकता है। तो छुट्टी का ये एक विशेष नियम है कि आप छुट्टी जिस पर्पज़ के लिए ली है उसी पर्पज़ के लिए उसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी बला है। तो कई बार हम यही सोचते कि हमने फुल ऑन टाइम जहाँ हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए समय दिया, अब कुछ पेंडिंग हमारी जो छुट्टियाँ बच गई हैं तो क्यों ना उसका यूज़ कहीं पार्ट टाइम जॉब के लिए किया जाए, या किसी तरह से उसका जो है वो हम फ़ायदा ले सकें। और ऑफिस में हमने कुछ और बता दिया और बाहर हम कुछ और
0: जी
1: पर्पज़ से निकल गए, तो उसका भुगतान जो है फिर हमें करना पड़ सकता है। तो वहाँ हम अपने राइट्स को बीच में नहीं ला सकते, क्योंकि राइट्स भी वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: राइट्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं।
0: बिल्कुल, एक तरह से हम अपने नियोक्ता को धोखा दे रहे हैं ये
1: जी
0: छुट्टियों का बहाना करके, तो वो नहीं
1: बिल्कुल
0: होना चाहिए।
1: जी, तो बहुत ही खास ये बातचीत आप सभी ने इंजॉय की है दोस्तों। और जाते जाते एक और खास बात पे मैं नज़र डालना चाहूँगी रोमा जी, कि चलो हमने अभी जो बात की कि जो गवर्नमेंट फील्ड में सरकार के अंडर है ना, लेकिन अगर हम आए, क्योंकि हम एक लोकल एरिया में ग्राउंड लेवल पे हम बात करें,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: जैसे कि किसी शॉप में हम काम कर रहे हैं, किसी के घर में हम काम कर रहे हैं, तो होता है ना कि जैसे हमारे साथ अगर अन्याय हुआ भी है, हमारे साथ कुछ गलत हो भी रहा है, शोषण भी हो रहा है, या हमारी हमने बताया है छुट्टी लेने के लिए, उसके बाद भी हमें धोखे में रखकर कई बार जो है वो किसी और को उस अंतराल में रख लिया जाता है और हमें
0: जी जी
1: निकाल दिया जाता है, तो हम वहाँ आवाज़ नहीं उठा पाते, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: हमें ऐसा लगता है कि इनका अपना घर है या अपनी दुकान है, तो हम इनके लिए कितना ही लड़ पाएंगे, शायद हमारी सुनी नहीं जाएगी। तो यहाँ आप क्या कहना
0: यहाँ
1: चाहेंगे?
0: भी सुनी जाती है। अगर मानो आप किसी के घर में काम कर रहे हैं या
1: जी
0: मजदूरी का काम कर रहे हैं और आपको छुट्टी की वजह से आपके नियोक्ता ने काम से निकाल दिया है, आपका वेतन भी नहीं दिया है, तो मैंने
1: जी
0: पहले ही कहा कि वेतन के लिए तो हम पगार के लिए जो है लेबर लॉ के तहत लेबर कोड में अपनी दरख्वास्त जो है वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ श्रम कार्यालय में जाकर हम अपनी जो है कंप्लेंट नियोक्ता के खिलाफ दे सकते हैं, एक सादे कागज़ पे लिख कर जो भी आपके साथ हुआ है तारीख के साथ और साक्ष्य के साथ अगर आप प्रेजेंट करें उसको, तो फिर आपको जो है वो पूरा न्याय मिलता है। इसके साथ साथ जो कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ सर्विस रूल्स होते हैं, और अगर सर्विस रूल्स के तहत हमें सही से जो है वो सारी सेवाएं नहीं मिलती हैं किसी से, तो जो नियोक्ता होता है वो भी जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। मानो मैंने आपकी सेवाएं ली हैं लेकिन आपने जो मैंने आपको काम दिया आपने वो सही ढंग
1: नहीं
0: से नहीं
1: किया।
0: किया, तो कंज्यूमर कोर्ट के तहत हम दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, अपनी समस्या जो है वो वहाँ पे रख सकते हैं।
1: जी
0: और स्थानीय निकायों में अगर छोटे कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो व्यापार मंडल के पास आप अपना जो है लिखित में जो है कंप्लेंट जो कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम छोटी बात समझकर ऐसे छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि
0: बिल्कुल
1: हमने 15 दिन काम किया और 15 दिन काम नहीं किया,
0: बिल्कुल
1: तो हम वहाँ फिर एक बार अगर मना कर दिया कि नहीं आपने पूरा मंथ काम नहीं किया तो आपको वेतन नहीं दिया जाएगा, तो वो 15 दिन भी उनके फिर ब्लैंक में चले जाते हैं।
0: ऐसा नहीं है, अगर आपने एक दिन भी काम किया है तो आप एक को एक दिन का भी वेतन, पगार या जो भी मजदूरी निर्धारित की है नियोक्ता ने वो आपको दी जाएगी।
1: जी
0: और अगर नियोक्ता ऐसा करता है तो आप इसके लिए अपनी कंप्लेन जो है वो सक्षम कार्यालय में जो भी मतलब आपका एलिजिबल जो है वहाँ पे आप दे सकते हैं। आप अगर पंचायत में काम किया है, नरेगा के तहत काम किया है, तब भी आप प्रधान को या पंचायत सेक्रेटरी को ये कंप्लेंट दे सकते हैं
1: जी
0: कि मुझे इस कार्य के लिए वेतन का भुगतान या मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।
1: बिल्कुल दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि कंपनीज की बात करें या बड़े बड़े

0: मतलब जगह की बात करें तो वहाँ तो खैर रिटर्न में लिया जाता है पहले ही, जब आप ज्वाइन करते हैं तभी आपसे रिटर्न में लिया जाता है कि इतना पीरियड रहेगा। अगर आप यहाँ से लीव भी करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको इतना टाइम पीरियड कंप्लीट करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन छोटी छोटी अगर हम बात करें, गांव लेवल पे बात करें, तो जो मजदूर वर्ग होते हैं वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं देखी जाती
1: नहीं देखी
0: अक्सर।
1: जाती। लेकिन अभी आपने कहा तो निजी कंपनियों की अगर मैं बात करूं और वहाँ पे अगर मेरी सेवाएं हायर की हैं और वहाँ पे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो
0: जी
1: साइन कर लिया जाता है, वहाँ पे एक जो वर्कर है उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। जो वर्कर हैं वो बिना प्रीवियस नोटिस
0: बिल्कुल
1: के नौकरी नहीं छोड़
0: जी
1: सकता है। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली और इस कंपनी को बिना बताए आपने छोड़ दिया, तो ये भी क्राइम की श्रेणी में आता है।
0: बिल्कुल
1: और यहाँ पर जो क्या होता है कि अगर आप बिना नोटिस के, प्रियर नोटिस के, अपनी पुरानी नौकरी छोड़ के नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो कई बार कंपनी के रूल्स के मुताबिक आपको 3 महीने का जो वेतन और साथ में उसके ऊपर इंटरेस्ट के साथ जो है वो आपको अब उस कंपनी को देना पड़ता है जिसने आपको पहले काम पर रखा था। तो
0: जी
1: ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर किसी कंपनी ने आपकी सेवाएं हायर की हैं तो आपके ऊपर विश्वास किया है और आप बीच रास्ते में बिना बताए वो काम छोड़ देते हैं, उनका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक करते हैं, तो इसके लिए कंपनी आपके ऊपर केस भी कर सकती है और 3 महीने का वेतन ब्याज के सहित आपसे वसूल कर सकती है।
0: जी दोस्तों, तो आप सभी ने बहुत अच्छे से छोटी बात जो है वो जान ली है, और ये बहुत ही खास बातचीत आज की आप सभी ने एंजॉय की है अपनी रेडी दोस्त रुचि का। और
1: रूमा के साथ
0: जी, तो अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों पे गौर फरमाएंगे, और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है और अगर आप मदद चाहते हैं, आपके साथ कोई ऐसा केस हो गया है, आपके साथ गलत हो गया है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें क्या ना करें, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर रहेगा
1: 9418431223। आप
0: जी
1: कभी
0: दोस्तों,
1: भी किसी भी माध्यम से, SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप के द्वारा या फिर डायरेक्ट कॉलिंग के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है हम उसका समाधान करने की हर संभव कोशिश करेंगे।
0: जी दोस्तों, और आप सवाल भी बता सकते हैं हमें कि इस पे क्या होना चाहिए, भेज सकते हैं सवाल, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि इसको इस तरह से बेहतर बनाया जा सकता
1: बिल्कुल
0: है या इसमें ये सवाल जो है वो ऐड ऑन किए जा सकते हैं। तो आप सभी जो है यूट्यूब चैनल पे जाके हमारी हर एक एपिसोड को देख सकते हैं, हर एक जानकारी को खुद तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इन्हीं बातों के साथ अब समय है आप सभी से अनुमति लेने का, तो दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और कार्यक्रम
1: रूमा को।
0: संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला गूंज
1: गूंज
0: अपने
1: अपने
0: पन
1: पन की।
0: की।

0: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूँ। जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों बरसी थी।
1: अरे सुन सुन।
2: यस मां।
1: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
2: माँ मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
1: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, भाई बहन का रिश्ता है सबसे खास और शानदार, राखी के धागे में छिपी है विश्वास की मिठास, हर जन्म में बना रहे भाई बहन का साथ। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार

आपके जीवन में प्रेम, खुशियाँ और अपनों का साथ लेकर आए। भाई बहन के इस खूबसूरत रिश्ते में हमेशा स्नेह, सम्मान और विश्वास की डोर मजबूत बनी रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। रेडियो गुंजन, आपकी आवाज़, आपके

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
2: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
2: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
2: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।
4: हेलो, देख ले भाई कुछ इंतजाम होता उधर।
5: मैंने कितनी बार कही थी, मेरी सुनते ही कहाँ है ये।
4: हाँ तने बेरा, बस सारी दुनियादारी का इब की बार मदद कर दे बस। राम राम राम राम। 30,000 का होगा बीज, कैसे करूंगा इंतजाम बता। किसानी कैसे होती है पता भी है तने, ये लेन देन के काम बंदे संभालेंगे, तू घर का चूल्हा चौको देख ले वही बहुत है।
5: ये लेन देन ठीक से होगा तभी तो घर संभलेगा ना।
4: तने समझ है लेन देन की, ले पकड़।
5: पैसा सही तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ बचाना है, यही होवे ना लेन देन।
4: बोलन में और करण में बहुत फर्क हुआ है।
5: सही कह रहे हो, ये देखो 17,000 है मेरे पास।
4: पासबुक,
5: दूध बेच के सारा पैसा नहीं दिया था तेरे, थोड़ा जमा करवा दिए थे खाते में, अब बाकी पैसों का इंतजाम कर लो, हम दोनों मिलकर अपना भला बुरा नफा नुकसान सब देख सके हैं।
4: हाँ घनश्याम, तेरी बहन ने बचा लिए ना तो भैंस बेचनी पड़ती, ईब लग गया है, ये असली किसान तो तेरी बहन है।
6: महिलाओं की आर्थिक निर्णयों में बराबर की भागीदारी, मतलब परिवार में उन्नति।
7: रिमझिम बरसता भादो का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन,

0: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो, क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
1: नेहा।
2: हाँ जी।
1: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
2: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
1: अच्छा बाबा, बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
2: नहीं जाना।
3: ये भगवान, क्या जुलूम है,

होस्ट एंड दोस्त रुचिका हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आशी दोस्त रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

91 दशमलव ओमेगा हर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो रिंगटोन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों उम्मीद करते हैं इस प्यारे से पंजाबी गीतों के सफर को आप सभी एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, भाई बहन का रिश्ता है सबसे खास और शानदार, राखी के धागे में छिपी है विश्वास की मिठास, हर जन्म में बना रहे भाई बहन का साथ। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में प्रेम, खुशियाँ और अपनों का साथ लेकर आए। भाई बहन के इस खूबसूरत रिश्ते में हमेशा स्नेह, सम्मान और विश्वास की डोर मजबूत बनी रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। रेडियो गुंजन, आपकी आवाज़, आपके अपने।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है। और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा। माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।
2: हेलो, देख ले भाई कुछ इंतजाम होता उधर।
3: मैंने कितनी बार कही थी, मेरी सुनते ही कहाँ है ये?
2: हाँ तने बेरा, बस सारी दुनियादारी का इब की बार मदद कर दे बस। राम राम राम राम। 30,000 का होगा बीज, कैसे करूंगा इंतजाम बता। किसानी कैसे होती है पता भी है तने? ये लेन देन के काम मन से मालन दे, तू घर का चूल्हा चौक देख ले वही बहुत है।
3: ये लेन देन ठीक से होगा तभी तो घर संभलेगा ना।
2: तन्ना समझ है लेन देन की, ले पकड़।
3: पैसा सही तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ बचाना है, यही होवे ना लेन देन।
2: बोलन में और करण में बहुत फर्क हुआ है।
3: सही कह रहे हो, ये देखो 17,000 है मेरे पास।
2: पासबुक?
3: दूध बेच के सारा पैसा नहीं दिया था तेरे, थोड़ा जमा करवा दिए थे खाते में, अब बाकी पैसों का इंतजाम कर लो, हम दोनों मिलकर अपना भला बुरा नफा नुकसान सब देख सके हैं।
2: हाँ घनश्याम, तेरी बहन ने बचा लिए ना तो भैंस बेचनी पड़ती, ईब लग गया है, ये असली किसान तो तेरी बहन है।
4: महिलाओं की आर्थिक निर्णयों में बराबर की भागीदारी, मतलब परिवार में उन्नति।
5: रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन।

0: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो। क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
1: नेहा।
2: हाँ जी।
1: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
2: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
1: अच्छा बाबा बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
2: नहीं जाना।
3: ये भगवान क्या जुलूम है,

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम लेके माटी दी महक। तां श्रोताओं कर दे ने कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कने, तोहां सारे इन्ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने बंदी।

तुहां सारें दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तने तुहां सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक आशो तो बढ़ते न कार्यक्रम चगे तने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहां सारिआं ट्यून कित्ते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिआ है माटी दी महक। श्रोताओं सुनदे ने इक और प्यारा दिया गीत।

91.2 MHz पर। तो हाँ सारे ट्यून कित है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैंने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी भी महक। तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि करने ता श्रोताओं बढ़ देने कार्यक्रम चल गए कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो तो शशि कन्ने अशो तो बढ़ दिन कार्यक्रम च आगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला थे ना रेडियो गुंजन धर्मशाला थे कने तो हाँ सारे यहाँ ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है माटी दी महक श्रोताओं सुनते नहीं एक और प्यारा दिया गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। इन्हें तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी भी महक। तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तने तो हां सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक आशो तो बढ़ते न कार्यक्रम जग गए तने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

92.2 MHz पर ए तो हाँ सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक कहा श्रोता अज कने कार्यक्रम च बस इतना ही तो हाँ सारे ने बने रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने।

रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, भाई बहन का रिश्ता है सबसे खास और शानदार, राखी के धागे में छिपी है विश्वास की मिठास, हर जन्म में बना रहे भाई बहन का साथ। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में प्रेम, खुशियाँ और अपनों का साथ लेकर आए। भाई बहन के इस खूबसूरत रिश्ते में हमेशा स्नेह, सम्मान और विश्वास की डोर मजबूत बनी रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। रेडियो गुंजन, आपकी आवाज़।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा। माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।
2: हेलो, देख ले भाई कुछ इंतजाम होता उधर।
3: मैंने कितनी बार कही थी, मेरी सुनते ही कहाँ है ये।
2: हाँ तने बेरा, बस सारी दुनियादारी का इब की बार मदद कर दे बस। राम राम राम राम। 30,000 का होगा बीज, कैसे करूंगा इंतजाम बता। किसानी कैसे होती है पता भी है तने, ये लेन देन के काम मन्ने संभाल दे। तू घर का चूल्हा चौक देख ले, वही बहुत है।
3: ये लेन देन ठीक से होगा तभी तो घर संभलेगा ना।
2: तने समझ है लेन देन की, ले पकड़।
3: पैसा सही तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ बचाना है, यही होवे ना लेन देन।
2: बोलन में और करण में बहुत फर्क हुआ है।
3: सही कह रहे हो, ये देखो 17,000 है मेरे पास।
2: पासबुक,
3: दूध बेच के सारा पैसा नहीं दिया था तेरे थे, थोड़ा जमा करवा दिए थे खाते में, अब बाकी पैसों का इंतजाम कर लो, हम दोनों मिलकर अपना भला बुरा नफा नुकसान सब देख सके हैं।
2: हाँ घनश्याम, तेरी बहन ने बचा लिए ना, तो भैंस बेचनी पड़ती, ईब लग गया है, ये असली किसान तो तेरी बहन है।
4: महिलाओं की आर्थिक निर्णयों में बराबर की भागीदारी, मतलब परिवार में उन्नति।
5: रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन,

लक्ष्मी पर्व आइए मिलकर मनाएं हम सब एक साथ। आने वाले जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

0: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा, चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा। इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो, क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
1: नेहा।
2: हाँ जी।
1: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
2: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
1: अच्छा बाबा, बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
2: नहीं जाना।
3: ये भगवान, क्या जुलूम है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, भाई बहन का रिश्ता है सबसे खास और शानदार, राखी के धागे में छिपी है विश्वास की मिठास, हर जन्म में बना रहे भाई बहन का साथ। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में प्रेम, खुशियाँ और अपनों का साथ लेकर आए। भाई बहन के इस खूबसूरत रिश्ते में हमेशा स्नेह, सम्मान और विश्वास की डोर मजबूत बनी रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। रेडियो गुंजन, आपकी आवाज़, आपके अपनों।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा। माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।
2: हेलो, देख ले भाई कुछ इंतजाम होता उधर।
3: मैंने कितनी बार कही थी, मेरी सुनते ही कहाँ है ये?
2: हाँ तने बेरा, बस सारी दुनियादारी का इब की बार मदद कर दे बस। राम राम राम राम। 30,000 का होगा बीज, कैसे करूंगा इंतजाम बता। किसानी कैसे होती है पता भी है तने? ये लेन देन के काम बंदे संभालेंगे, तू घर का चूल्हा चौको देख ले वही बहुत है।
3: ये लेन देन ठीक से होगा तभी तो घर संभलेगा ना।
2: तने समझ है लेन देन की, ले पकड़।
3: पैसा सही तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ बचाना है, यही होवे ना लेन देन।
2: बोलन में और करण में बहुत फर्क हुआ है।
3: सही कह रहे हो, ये देखो 17,000 है मेरे पास।
2: पासबुक?
3: दूध बेच के सारा पैसा नहीं दिया था तेरे, थोड़ा जमा करवा दिए थे खाते में, अब बाकी पैसों का इंतजाम कर लो, हम दोनों मिलकर अपना भला बुरा नफा नुकसान सब देख सके हैं।
2: हाँ घनश्याम, तेरी बहन ने बचा लिए ना तो भैंस बेचनी पड़ती, ईब लग गया है, ये असली किसान तो तेरी बहन है।
4: महिलाओं की आर्थिक निर्णयों में बराबर की भागीदारी, मतलब परिवार में उन्नति।
5: रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन।

0: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो। क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
1: नेहा।
2: हाँ जी।
1: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
2: हाँ बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
1: अच्छा बाबा बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
2: नहीं जाना।
3: ये भगवान क्या जुलूम है,

नमस्कार श्रोताओं, तुसी सभी हो मेरा प्यार भरा नमस्ते हा। हूँ सचिन कपूर हा, कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर हाजिर हुआ हा। सभी हुणने आले रा तहे दिल तो स्वागत करनो अभिनंदन करनो कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा मंच। तो सभी इस समय ट्यून कर रहा है 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला। तक देने श्रोताओं तो है सब उम्मीद करनो सब खरे भुने राजे बाजे भुने। चलिए जी कार्यक्रम मंच सभी पहले गीत हूं लेना चाह तो तुम भी कुछ दे दे वालू कर दे कि गीत हूं लेंदे ने। लेकिन चलिए शो तो अगर चाह हा ना तो फिर चाह जो मकान न चींदा और चाह जो चाई होगी कि असो हूं न चींदा है ना। तो सब भी चाह कि पहले गीत हूं ले आगाज कर दे कार्यक्रम रहा इस गीता सोगे।

बहुत आनंद आगुना सब जो गीत सुनने का श्रोतो तो सब ये ट्यून कर रहे समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव फोनो कर देने अपने अपने वेडियो सेट मा हिंदी अपनी गप्पा आइए जी कार्यक्रम जो आगू बढ़ते हैं श्रोतो आज असू गलबात करने हाँ बुजुर्गा रे बारे अंदर कि आखिरकार बुजुर्गा रा ख्याल किया सो असू की करे रखना हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है बड़ा ज्यादा जरूरी है श्रोतो की बुजुर्गा रा ख्याल किया सो है की करे रखना है ना सिर्फ तीनो त्रा आइटम मेरी रोटी देना या त्रा आइटम मेरा खाना दीना ही तैयारी सेवा नहीं है शो तो और भी बहुत चीज अगे ने सो है कर सकते हैं अपने बुजुर्गा वास्ते बशर्ते अगर करना चाहता अगर ना करना चाहता फिर क्या बोली सकते है ना और दिल मा इच्छा बुना चिंदिया सो जज्बात बुने चिंदे सो संस्कार बुने चिंदे तो सब काम किया सो बुझ गंदा टाइम ना लगो या टाइम नहीं है ये तो सिर्फ एक बहाना है शो तो समय सभी ले 24 घंटे रहे बंदा सिर्फ जो इम्पोर्टेंट ही निंदे घर अंदर तिन्या वास्ते समय कढ़ना इंदा दायित्व और असु जरूरी भी हा चलिए दस ले जरूर लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में हुन देन पहले ये गीत।

श्रोतोवाक्मो के फिर स्वागत है सभी वह गीता थो बाद बुजुर्गा रिया है गल बात लोरे तो बुजुर्गा भी देखभाल करना त्यारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो प्राथमिकता देना है सभी पहले था त्यारा मानसिक स्वास्थ्य की ना सो हेरना है त्यारा शारीरिक स्वास्थ्य की ना सो हेरना है और इतियो सब थो पहले इम्पोर्टेंस देना की आ सोइंदा दायित्व बनता है श्रोतो तिन्यो सक्रिय और फिट रहने वास्ते किया सो तिन्यो प्रोत्साहित करना तिन्यो मोटिवेट करना ये इनका फर्ज बनता है श्रोतो नियमित स्वास्थ्य जांच कराना भी इंदा ही फर्ज है तिंजा ना बलना सो की असु रेगुलर स्वास्थ्य जांच वास्ते की असु बच्चा लेकर चल या फलाने लेकर चल ए इंदा फर्ज बनदा कि तिंजो है लेकर गान उचित पोषण दीन तिंजो शो तो सामाजिक रूप थो सक्रिय रखना और त्यारी व्यक्तिगत जागरूकता जो समझना और तिंजा मन समझ बनाना शो तो तिंजो अंडरस्टैंड करना ए भी सिर्फ और सिर्फ इंदा ही दायित्व है ना कि त्यारा कि सो बाल ले आंसू करना इस बाला मत बका शो तो फिलहाल कार्यक्रम जो है बढ़ेंदे और सभी जो हणंदे गीत

कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप मौके फिर सब भी होने वाले रहा तो सब मैसेज कर सकते हैं 14708889 पर। फिलहाल कार्यक्रम जो बड़ंदन हगो और बुजुर्ग रिया है गलबात लौरे थे शोधों तो चलिए थोड़ा करिए और इस टॉपिक जो हगो बड़ंदन सो बुजुर्ग सच में बहुत दिल थो आशीर्वाद दिंदे दिल थो खुश बुंदन अगर त्यार रहते है तीनो टाइम रहते है नुहाई दिंदे ने टाइम रहे त्यार कपड़े धोई दिंदे टाइम रहे तीनो खान पान टाइम वे तीनो अगर तुसो लगता कि बुजुर्ग के न सो थोड़ी करी एक्सरसाइज करी सकते हैं तो तिहारी एक्सरसाइज कराई करी तीनो शो तो धुप्पा बखाली करी भी कजू की धुप भी किया सो वो मोस्ट इंपोर्टेंट बुंदी सीजन वाइज ता इस सब चीजा का ख्याल किया सो रखना इनका दायित्व इनका कर्तव्य है महत्वपूर्ण अंग हा बुजुर्ग श्रोताओं इनके परिवार मंच है ना जी ता शारीरिक देखभाल की कर रखना श्रोतो है सोचो कर दिन ता रोजाना तीनो व्यायाम करा योग करा बुजुर्ग जो व्यायाम और योग वास्ते की है सो प्रोत्साहित करा तीनों सोगी करा इवन की एक्सरसाइज है ना और तीनों फिट रहने वास्ते की सो बल्ला शोतो है ना बीमारी थो दूर सुस्ता ही रह सकते हैं जहने एक्सरसाइज कर ले जहने सो अच्छा फल फ्रूट खा ले जहने सो शोतो पूरे तरीके हो गई किया सो योगा कर ले व्यायाम कर ले थोड़ी बहुत वॉक कर सकते हैं तो सो कर ले ता सो बीमारी थो दूर रह सकते हैं। बहरहाल चल दे और कार्यक्रम में हूं देने गीत

कार्यक्रम सचिन कपूर सो गए हुण करदे तो है हिंदी अपनी गपा हक मौके तेरे बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है सभी हुणने आले रा सभी श्रोता गण रा और सचिन कपूर रा कार्यक्रम हिंदी अपनी गपा हुण करदे और आज है कार्यक्रम में श्रोताओं टॉपिक लियो रा बुजुर्गारी देखभाल जो की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेरा बुजुर्ग वास्ते अच्छा और ताजा खाना के असो तीनों को आना चिंता है ये ना की बात करनी रोटी बचो रही सो सेकी करी देती जी काम निपटाई लो कि कर खदाम लग रही और बुजुर्ग ना खंदे था ब्याकनी रोटी है या ब्याकना कुछ प्यूरा बात सब्जी तो सो सेकी करती देता है ना बुजुर्ग का वास्ते खास कर सो तो तुम्हें अपू दे कर लिया कोई सुने को तुम्हें डाइजेस्ट कर सकते तो है काम करू कर देन बुजुर्ग बेचारे आग जगह बेखुरे बंदे ना तो जो की तीन सारी उम्र तक मेहनत कर रहे बंदे सो तो अच्छा खान पीन दीना के असो इनका दायित्व बनता है प्रोटीन युक्त संतुलित आहार तीनों दिन छोतो और फास्ट फूड तो वैसे बुजुर्ग इन देरदे ने और तुसु भी लात ना लवानी बुजुर्गो है ना कई सियाने इन दे बोलदे कि हां ले इंदे है त खाई लंदे ने है त ना खाना फास्ट फूड बिल्कुल ना खाना और प्रदूषण तो बचे करे रहना ज्यादा प्रदूषित जगह के असो बुजुर्ग जो ना लेकर जाना छोतो स्वास्थ्य जांच किया सो नियमित रूप थो डॉक्टर थो स्वास्थ्य जांच करवाओ करा सो थो उचित समय में किया सो तिन्यो दवाई किया सो दिच्छु करा और रेगुलर रूटीन चेकअप किया सो बुजुर्ग का कराना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहरहाल चल दिन थोड़ा करी और हम और तो है हुनु कर दिन कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा आरचे सचिन कपूर सोगी।

সামুদায়িক বেড়ি গুঞ্জন ধরমশালা তো হেজ বি টিউন কুর রাউ সচিন কাপুর রাতুন দা আপনা আর জে ভিডিও জো কি হাইয়া কার্যক্রম জো হগো বড়ন্দন শতো অর মানসিক অর সামাজিক দেখভাল রে বারে পে গল বাত কর লেন্দন সক্রিয় জীবন শতো তিনিয়া সক্রিয় অর ব্যস্ত বেনে বাস্তে কি আ সো প্রোৎসাহিত করনা হানা কয়ো কি এ মানসিক স্বাস্থ্য জো কি আ সো বড়াওয়া দিন্দা হা আগর সো বুজুর্গ ইন দা ব্যস্ত রেন্দ জো সো কাম করি সকদেন মতলব হানা তিয়া সো আগর কাম করি সকদে হিন তাই বহুত হি আচ্ছি গল তিয়ারা মানসিক স্বাস্থ্য কি এতো ठीक रहता है सो तो शरीर भी गया सो थोड़ा बहुत फिट रहता है। सामाजिक जुड़ाव बहुत जरूरी है बुजुर्ग वास्ते अकेलापन जो काम करना है बुजुर्ग रे भावनात्मक भलाई वे वास्ते की तीनों परिवार और दोस्त हो गए की ऐसा जोड़ी करी रखना है। कोई सियाणा के इनके घर है सो तो सो अगर तुसो लगता की अकेला फील करू करता है तो तस्यो अपू हो जोड़ी करी रखा या फिर आस पड़ोस में कोई और सियाणा इनते तीनों आपस में किया गलबात तैयारी भुआ ऐसा गल्ला रे खास ख्याल रखना। अगर सो ना गलबात करने लायक ही या ना इन्हें गाने लाइक ने तो है किया सो अपने बुजुर्ग होगे लगातार संपर्क में रहे या तीनों अकेलापन किया सो फील मत कराश हो तो कार्यक्रम जो थोड़ी करी और हगो बढ़ देन और हम देने प्यारे दे गीत।

सो तुम बहुत मजे चुकड़ता गीता हूं नेवा, लेकिन जो आज का टॉपिक है भी बहुत मजेदार है। मेवे तो दिल होगी लगुरा ये टॉपिक है श्रोतो बाकी मैं कह चुकी जो बुजुर्ग सो इनकी पहचान है। इन श्रोतो बुजुर्ग वास्ते मानसिक शांति भी बहुत जरूरी है ना। मानसिक शांति की है श्रोतो सो भी बहुत जरूरी है बुजुर्ग वास्ते। सो अपने मन री शांति होगी क्या ना, सो रैन इट्स सो इम्पोर्टेंट है ना। घर अंदर काला कलेश के सो ना भूना चाहती है। अपू मियाँ बीबी भी लड़ाई है तो सो इनके बुजुर्ग तक न गाना चाहते हैं, या बच्चे भी लड़ाई है तो सो बुजुर्ग तक न गाना चाहते हैं। तीनों जितना हो सकता तू ना मानसिक स्वास्थ्य के सो त्यारा आ ठीक रहे तीनों या एर और रिटेंशन आ गया ना सोना भून सो तो है गल्ला रा विशेष ध्यान किया सो जरूर रखना तो है सब। आइए कार्यक्रम जो होगा बढ़ा दे और कार्यक्रम में लेकर चल दे तुझे सब बीजो इस प्यारे देगी तारी किनारी।

ਸ਼ੋਦਾਂ ਆਈਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਚਿਨ ਕਪੂਰ ਸੋਗੀ ਇੰਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਹਨਾ ਘਰ ਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਗਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਦਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਘਰ ਘਰ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੀਓ ਬੜੀਆ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਹ ਸੋ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਇਨ ਸ਼ੋਦਾਂ ਹਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆ ਸੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਦੁਆ ਦਿਆ चिकित्सा देखभाल रा प्रबंधन त्यारा करा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पौष्टिक भोजन प्रदान तिन्हों करा श्रोता हूँ शारीरिक गतिविधि जो वास्ते तिन्हों प्रोत्साहित करा श्रोता हूँ ना संगीत तिन्हों होना अगर तिन्हों पसंद आता संगीत तिन्हों होना है ना नचना की है सो तिन्हों बल्ला की अमा दो दो पराठी लाई लेंदे या बाबा दो दो पराठी क्या ना सो लाई लेंदे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना घर मन जो बुजुर्ग रहे कर दें तैयारी देखभाल की है सो करना बहुत इम्पोर्टेंट है असू सब भी वास्ते है श्रोता हूँ तो श्रोता हूँ अभी आऊँ सचिन कपूर ले लें तो सो इजाजत और गंदे गंदे बस ये बोलना चाहूँ जो हमेशा बोलूँ की बुजुर्गारी सेवा करते रहे और आज का टॉपिक भी था इसी पर है और आज का ये मेरा कार्यक्रम की इंदे बुजुर्गा पर हाश होता हूँ ता इंदे बुजुर्गा जो समर्पित है प्यारा दे कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा आज सचिन कपूर री तरफ था और रेडियो गुंजन री तरफ था सो प्लीज टेक केयर अपने बुजुर्गा रे की सो ख्याल रखा टेक केयर करा बुजुर्गा री मोस्ट इम्पोर्टेंट ही ना सुवास्थ है इंया था श्रोता हूँ घर किया सो घर ना मंदिर बने गंदा अगर बुजुर्गा री सेवा है तस तरीके होगी और मन चितलाई करी कर दे हिंदा इंया शब्द था लेनो इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, भाई बहन का रिश्ता है सबसे खास और शानदार, राखी के धागे में छिपी है विश्वास की मिठास, हर जन्म में बना रहे भाई बहन का साथ। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में प्रेम, खुशियाँ और अपनों का साथ लेकर आए। भाई बहन के इस खूबसूरत रिश्ते में हमेशा स्नेह, सम्मान और विश्वास की डोर मजबूत बनी रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। रेडियो गुंजन, आपकी आवाज़, आपके अपनों के।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ,
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।
4: हेलो, देख लियो भाई कुछ इंतजाम होता उधर।
5: मैंने कितनी बार कही थी, मेरी सुनते ही कहाँ ये?
4: हाँ तने बेरा, बस सारी दुनियादारी का इब की बार मदद कर दे बस। राम राम राम राम। 30,000 का होगा बीज, कैसे करूंगा इंतजाम बता। किसानी कैसे होती है पता भी है तने? ये लेन देन के काम मन से मालन दे, तू घर का चूल्हा चौक देख ले वही बहुत है।
5: ये लेन देन ठीक से होगा तभी तो घर संभलेगा ना।
4: तने समझ है लेन देन की, ले पकड़।
5: पैसा सही तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ बचाना है, यही होवे ना लेन देन।
4: बोलन में और करण में बहुत फर्क हुआ है।
5: सही कह रहे हो, ये देखो 17,000 है मेरे पास।
4: पासबुक?
5: दूध बेच के सारा पैसा नहीं दिया था तेरे थे, थोड़ा जमा करवा दिए थे खाते में, अब बाकी पैसों का इंतजाम कर लो, हम दोनों मिलकर अपना भला बुरा नफा नुकसान सब देख सके हैं।
4: हाँ घनश्याम, तेरी बहन ने बचा लिए ना तो भैंस बेचनी पड़ती, ईब लग गया है, ये असली किसान तेरी बहन है।
6: महिलाओं की आर्थिक निर्णयों में बराबर की भागीदारी, मतलब परिवार में उन्नति।
7: रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन,

जन्माष्टमी पर्व आइए मिलकर मनाएं हम सब एक साथ। आने वाले जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

0: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो। क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
1: नेहा।
2: हाँ जी।
1: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
2: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
1: ना हूँ अपने दो शब्द
2: नहीं जाना।
3: ये भगवान क्या जुलूम है,

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारी से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: गुड नाइट।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूं। और श्रोताओ आइए जानते हैं सबसे पहले इस वक्त धर्मशाला का और आसपास का तापमान। 19 डिग्री सेल्सियस तापमान है और वातावरण में नमी है 92%। और मौसम की बात करें तो आज तो हमारा जो कह सकते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार है वो बड़ी ही खिली खिली धूप से और अच्छा सा दिन बीता। सभी बहनें अपने अपने भाइयों के घरों में गई, प्यार से राखी बांधी। और जब मैं यहाँ आ रही थी तो जितने भी हमारे छोटे छोटे स्टॉपेज हैं वहाँ पे खूब सारी बहनें हर स्टॉप पे खड़ी हुई दिखी और अलग अलग चेहरे अलग अलग भाव। और वो देखते देखते मैं आ रही थी और मेरे अंदर मेरा ही अंतर्द्वंद चल रहा था। और उन बहनों को देख करके मैं भी एक बहन हूँ तो मेरे अपने मन में कुछ कहानियाँ शुरू हो गई, जो बचपन था किस तरह से बीता था। और वो बहनें जो बचपन में छोटी सी नन्ही सी परियाँ होती थी वो आज एक औरत का रूप ले चुकी थी और अपने ससुराल से कुछ समय निकाल करके वो अपने भाइयों को राखी बांधने आई थी। जाहिर सी बात है श्रोताओं, जो भी बस स्टॉप पे खड़ी थी हाथों में उन्होंने थैले उठाए थे और कुछ ना कुछ दिख रहा था सामान। किसी के हाथों में प्लांट्स थे अपने बैग में डाले हुए। और जब मायके से आना होता है बेटियों का तो मायके का अलग ही लगाव होता है। खैर, मायके का लगाव और मायके में बिताए हुए पल दिन वो सभी बेटियां वो सभी बहनें जानती हैं। और बातचीत कार्यक्रम में आज करेंगे, फिर से जुड़ेंगे अपने बचपन के दिनों के साथ, अपने मायके की यादों के साथ, क्योंकि रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है वो आज चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और हमारे जो वेद शास्त्र हैं उनके अनुसार जो है वो भद्रा काल रहता है, उसमें राखी नहीं बांधी जाती। तो बहुत सी बहनें ऐसी भी होंगी जिन्होंने अपने भाइयों को अभी राखी नहीं बांधी है और रात के समय भी राखी जो है वो बांधती हैं। तो चलिए, रक्षाबंधन का पर्व अभी चल रहा है, एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये पहला प्यारा सा गीत। और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, यूँ ही बने रहूँगी आपके साथ रात्रि 8 बजे तक।

श्रोतो 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और श्रोताओं कार्यक्रम में अब आपके साथ साझा कर रहे हैं विचार। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठिए, आज का अवसर ही सबसे अच्छा है। जी हाँ श्रोताओं, हम अक्सर अवसर की तलाश में बैठे रहते हैं कि ज़िंदगी में हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब सही समय आएगा, जब सही अवसर होगा हम तब करेंगे। लेकिन हर दिन हर पल एक नया अवसर लेकर के आता है, इसलिए आपको जो भी करना है उसे आज से अभी से शुरू कर दीजिए। श्रोतो 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और आज है रक्षाबंधन का पावन पर्व। श्रोताओं आनंद उठाइए कार्यक्रम में, कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

श्रोताओ 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और कार्यक्रम का नाम है गुड इवनिंग धर्मशाला। और श्रोताओ, आज का दिन बहुत से रिश्तों को जोड़ता है, खासकर बहन भाई के दिलों में कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर के अनबन हो जाती है, लेकिन बहनों को साल भर इंतज़ार रहता है आज के इस पावन पर्व का, क्योंकि मन में कितने ही छोटे छोटे हम कह सकते हैं मलाल हो, या भाई के लिए या किसी के भी रिश्ते के लिए थोड़ी बहुत मन में थोड़ी बहुत खटास कह सकते हैं वो हो, लेकिन जब ये त्यौहार आता है, खासकर भाई बहन के पावन पर्व का त्यौहार, तो बहन हर उस बुरी याद को भुला करके उड़ते हुए, मुझे तो ऐसे लगता है अगर वो दूर होती है तो लगता है कि ये दूरी कुछ मिनटों में, चंद मिनटों में पूरी हो जाए और हम किसी न किसी तरह से अपने भाई के घर पहुंच जाएं, उसकी कलाई पर राखी बांधें और भाई का जो प्यार बचपन से उसे मिल रहा होता है वो उसी तरह से फिर से मिले और हम फिर से एक हो जाएं। खैर, हम यही दुआ करेंगे कि हर भाई बहन के रिश्ते में कभी भी दूरी और खटास ना आए, ये रिश्ता प्यार का, मजबूती का, अपनेपन का यूं ही उम्र बना रहे। और आज के दिन सभी घरों में रौनक होती है, सब अपने अपने लोग इकट्ठे होते हैं और जब सब इकट्ठे होते हैं तो घर में रौनक का माहौल होता है।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब एक जानकारी श्रोताओं आपके साथ साझा कर रहे हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि रक्षाबंधन का त्यौहार समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के साथ साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पर्व भाई बहन के बीच प्यार, स्नेह और परस्पर विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा, ये पर्व सद्भाव और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। ये हमारी समृद्ध संस्कृति और विरासत को संजोने का भी अवसर है। उन्होंने कहा कि भाई बहन के अटूट रिश्ते के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। उन्होंने कामना की कि ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर के आएगा।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, आज है रक्षाबंधन का पावन पर्व। रक्षाबंधन यानी रक्षा का बंधन, ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आज इसका सबसे लोकप्रिय रूप भाई बहन के रिश्ते से जुड़ा है, लेकिन पुराने समय में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा केवल भाई की कलाई तक सीमित नहीं थी। इससे जुड़ी हुई कुछ पुरानी पौराणिक कथाएं, कहानियां और परंपराएं हैं, उनके बारे में कार्यक्रम में आपको बताने का प्रयास हम जरूर करेंगे। लेकिन कार्यक्रम में समय हो रहा है श्रोताओं आपको एक और प्यारा सा गीत सुनवाने का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। बहनें हंसती हैं तो हंसती हैं, कई भाई इतने अच्छे होते हैं, वैसे तो सभी भाई अच्छे होते हैं, लेकिन जब तक उनकी बहनों के चेहरे पे मुस्कान और हंसी ना आए तब तक उन्हें चैन नहीं आता। और जब बहनें हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, खिलखिलाती हैं, तब उन्हें लगता है कि पूरा घर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, खिलखिला रहा है, और उनकी हंसी से, उनकी खुशी से, उनकी सभी की ज़िंदगी में भी खुशी है और बहार है।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, आज है रक्षाबंधन का पावन पर्व और आज के दिन भाई बहन का प्यार उमड़ घुमड़ कर सालों तक जिन बहनों ने व्यस्तता के चलते अपने भाई के घर की तरफ का रुख नहीं किया था, आज हर हाल में वो बहनें जो हैं वो अपने भाई के पास जाती हैं और रक्षा सूत्र राखी अपने भाई की कलाई पर बांधती हैं। श्रोताओ, राखी का पावन पर्व और राखी से जुड़ी हुई कुछ परंपराएं, कुछ पौराणिक कथाएं आपके साथ साझा करेंगे इस कार्यक्रम में। सबसे पुरानी धार्मिक परंपराओं में से एक का उल्लेख भविष्य पुराण से जुड़ा मिलता है। कथा के अनुसार देवताओं और दानवों के युद्ध में इंद्र की स्थिति कमजोर थी, तब इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, जिसके बाद इंद्र युद्ध के लिए गए। यानी यहाँ राखी का मूल भाव था किसी प्रिय व्यक्ति की मंगल और सुरक्षा की कामना करना। इसके अलावा और भी कुछ पौराणिक कथाएं हैं जो आपके साथ हम साझा करेंगे श्रोताओं, लेकिन कार्यक्रम में फिर से समय हो रहा है आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत सुनाने का।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और बात कर रहे हैं श्रोताओं रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। और श्रोताओं सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा जो हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी हुई

श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। ये लोकप्रिय मान्यता है कि श्री कृष्ण की उंगली से रक्त निकलने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दी और कृष्ण ने उनके स्नेह को स्वीकार किया और बाद में द्रौपदी की रक्षा की। और श्रोताओ, इसके अलावा एक और प्रसिद्ध कथा राजा बलि और माता लक्ष्मी की है और इस कथा के अनुसार मान्यता है कि लक्ष्मी जी ने बलि की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें भाई बनाया और बदले में भगवान विष्णु को बैकुंठ वापस ले जाने का अनुरोध किया। ये भी धार्मिक परंपरा में प्रचलित कथा है। श्रोताओ, राखी का पावन पर्व भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है, उनके समर्पण को दर्शाता है और बहुत सी बहनें आज के दिन अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाती। वो इसलिए क्योंकि उनके भाई यहाँ नहीं रहते, उस राज्य में नहीं रहते या कई भाई विदेशों में रहते हैं, लेकिन वो बहनें जब राखी भेजती हैं बाय पोस्ट तो उस राखी के लिफाफे में वो सिर्फ एक कच्चा धागा नहीं जाता, उनका प्यार, उनका बचपन का जो भी उनके साथ हंसी ठिठोली अटकेलियाँ लड़ाई झगड़े प्यारवश जो किया होता है वो सब उस धागे में समाहित होता है। और साथ ही साथ उसके साथ ये भी दुआ होती है कि ये कच्चा धागा मेरे भाई का हमेशा ख्याल रखे, उसकी रक्षा करे और बदले में बस यही कामना कि भाई सही सलामत चाहे परदेश में है चाहे विदेश में है वापस लौटे जल्दी से जल्दी, ताकि भाई की उस प्यारी सी कलाई पर ये बहना फिर से प्यार से राखी बांध पाए।

श्रोतो 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं इस समय रक्षाबंधन के पावन पर्व की। श्रोताओं, बात कर रहे हैं रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ इतिहास और रक्षाबंधन से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में। श्रोताओं, फिर इतिहास का एक बहुत खूबसूरत अध्याय आया 1905 में। बंगाल विभाजन के समय रक्षाबंधन के प्रतीक को एक नया सामाजिक अर्थ मिला। रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एकता और भाईचारे का संदेश देने के लिए राखी को माध्यम बनाया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ और उस दौर में लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर एकता का संदेश दिया। श्रोताओं, इसीलिए अगर पूरे इतिहास को और पौराणिक कथाओं को हम जोड़कर कहें तो रक्षाबंधन सिर्फ भाई की कलाई पर बांधा गया धागा नहीं, वे सदियों से चले आ रहे रक्षा प्रेम और रिश्ते निभाने के भाव का प्रतीक है, जिसका रूप समय के साथ बदलता गया। श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में अब आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

0: श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं श्रोताओं, जिला कांगड़ा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अंडर 14 लड़के लड़कियों के खेल टूर्नामेंट का खेल कैलेंडर जारी कर दिया गया है। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा बलविंदर सिंह गुलेरिया ने बताया कि खंड स्तरीय प्रतियोगिताएं 31 अगस्त से 2 सितंबर तक जिला के 23 शिक्षा खंडों के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के विभिन्न स्थलों पर आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया इन प्रतियोगिताओं में खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन तथा चौस की स्पर्धाएं करवाई जाएंगी। इसके उपरांत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन विभिन्न विद्यालयों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। जिला स्तरीय लड़कों की मेजर खेल प्रतियोगिताएं 9 से 11 सितंबर तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परागपुर में होंगी। इसमें हैंडबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कुश्ती तथा फुटबॉल की स्पर्धाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय माइनर लड़कों की प्रतियोगिताएं 15 से 17 सितंबर तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घमरूर में होंगी। इसमें कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन तथा वॉलीबॉल की स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त अंडर 14 लड़के लड़कियों की एथलेटिक्स, चौस, योगा, जुडो, ताइक्वांडो सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं 19 से 22 सितंबर तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंडबाड़ी में आयोजित होंगी। प्रतियोगिताओं के पहले 2 दिन लड़कों तथा अगले 2 दिन लड़कियों की स्पर्धाएं करवाई जाएंगी। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने बताया कि प्रत्येक टीम के लिए प्रतियोगिता से एक दिन पहले आयोजन स्थल पर पहुंचकर अपनी प्रविष्टि करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने संबंधित विद्यालयों से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रतियोगिताओं में भाग लेने का आवाहन किया है। श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। 7 बज चुके हैं शाम के और अब आप सुनेंगे समाचार।
1: ₹800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो सका है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
2: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन की संभावना है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800-1804747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों की वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओ 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त विंकी के साथ। समाचारों के बाद श्रोताओं फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। रक्षाबंधन का पावन पर्व हम मना रहे हैं श्रोताओं, और बहुत सी बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध दी है, लेकिन कोई ना कोई बहन अभी भी इंतज़ार में होगी जो शायद देर से पहुंची है, या उनके भाई शायद काम के सिलसिले में चले गए थे सुबह और शाम को या रात तक घर वापस आएंगे। चाहे सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, बहन को भाई की कलाई में राखी बांधने का इंतज़ार रहता ही है। और श्रोताओं सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, हम बहनों का भाई के लिए प्यार हो, अपनापन हो, या भाई का बहनों के साथ प्यार, लगाव, अपनापन, रिश्तों में थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं दूरी आ जाती है अपनी अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों को लेकर के। कई बार भाई घर से दूर हो जाते हैं, या किसी सिलसिले में उन्हें काम के सिलसिले में या किसी भी कारणवश उन्हें दूर जाना पड़ता है, लेकिन ये जो तीज त्यौहार होते हैं इसमें अपनेपन का वो एहसास जो है वो त्यौहारों के आने से पहले ही होने लग पड़ता है कि अगर ये त्यौहार आए और हम किसी न किसी तरह से अपने अपनों के बीच पहुंच जाएं और वो सारी यादें, वो सारी बचपन की बातें याद आने लगती हैं जो हमने उस एक ही घर में इकट्ठा होकर के समय बिताया होता है। कभी लड़े होते हैं, कभी साथ में खेले होते हैं, कभी अटखेलियाँ की होती हैं, वो सारा समय याद आता है जब तक हम उस घर नहीं पहुंच जाते। श्रोताओ 91.2 MHz, ये है रेडियो गुंजन, आपका अपना रेडियो चैनल।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, इस वक्त आप हमें सुन पा रहे हैं रेडियो गुंजन के माध्यम से 91.2 मेगाहर्ट्ज पर, और फेसबुक पेज पर भी हम लाइव हो गए हैं। सभी फेसबुक के हमारे जो दर्शक हैं वो अगर इस वक्त फेसबुक पेज पर लाइव हैं तो उन सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं श्रोताओं आपको देते हैं। श्रोताओं, रक्षाबंधन का पावन पर्व है और प्यारे प्यारे से गीत, जो गीत हमने साल भर नहीं सुने होते वो गीत चुन करके आज मैं आपके लिए लाई हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गीत पसंद आ रहे होंगे। और टेक्नोलॉजी ने काफ़ी विस्तार कर लिया है श्रोताओं, और हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें AI का सहारा लेते हैं, इंटरनेट का सहारा लेते हैं, लेकिन एक चीज़ है अभी भी जो कि मैंने अभी अभी महसूस की, और वो है राखी का जो ये पावन पर्व है। जो भाई विदेश में रहते हैं या अलग राज्य में रहते हैं, उनकी बहनें एक राखी जब पोस्ट करती हैं तो वो एक कच्चा धागा पोस्ट नहीं करती, उस कच्चे धागे के साथ उनका प्यार, उनका बचपन का वो सारा घर में बिताया हुआ समय, उनकी अटखेलियाँ, उनकी वो शरारतें, वो सब कुछ, और वो भाई की रक्षा का वचन, वो सब कुछ एक राखी के साथ उस लिफाफे में बंद करके भेजती हैं, और उम्मीद करती हैं कि जल्द से जल्द ये राखी हमारे भाई तक पहुँचे। और वहीं दूसरी ओर भाइयों को भी इंतज़ार रहता है कि कब राखी आएगी। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे कि भाइयों को भी इंतज़ार होता है, हमें लगता है कि हम अपनी तरफ से तो भेज रहे हैं, आगे वाले को इंतज़ार होगा या नहीं होगा, लेकिन इंतज़ार होता है। ये जो रिश्ते होते हैं, ये जो आपसी प्यार होता है, अपनापन होता है, साल भर चाहे हम उनसे बात भी ना करें, मिलें भी ना, लेकिन रक्षाबंधन में खासकर जब रक्षाबंधन का त्यौहार आने लगता है तो पहले से ही हमारे दिल में कहीं ना कहीं ये आस जगनी शुरू हो जाती है कि कब हमारी बहनों द्वारा भेजी गई राखी हम तक पहुंचेगी और हम भी अपनी कलाई पर उस राखी को बांधेंगे। और बदले में भाई बहन को ये विश्वास देता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई हर मोड़ पर खड़ा मिलेगा, हर मोड़ पर तुम्हारी रक्षा करेगा। और बहन इतने से प्यार में और इन शब्दों में ही जो है वो अपने आप को धन्य मान लेती है, और आई विश कि हमारी सारी बहनें जो हैं वो धन्य रहें और भाइयों का प्यार उन पर यूं ही बना रहे, यूं ही मिलता रहे। श्रोताओं, रक्षाबंधन का पावन पर्व और रक्षाबंधन के ऊपर एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवा रहे हैं। इंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक और बने रहिए यूं ही रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। कलाई पर बंधा ये धागा सिर्फ धागा नहीं होता, इसमें बचपन की शरारतें, माँ की डांट और भाई का मनाना छुपा होता है। राखी में छुपी होती है वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ, वो रूठना, फिर चुपके से मान जाना, वो एक दूसरे की चीज़ें छीनना और फिर दुनिया से छुपाकर एक दूसरे का साथ निभाना। राखी कहती है, दूरी चाहे कितनी भी हो जाए, रिश्तों की डोर कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्ते साथ रहने से नहीं, दिल में रहने से ज़िंदा रहते हैं।

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओ, रक्षाबंधन का पावन पर्व आज के दिन है और रक्षाबंधन के बारे में ही हम कार्यक्रम में आज बात कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ इतिहास आपके साथ साझा किया और किस तरह से भाई बहन का प्यार बचपन से बढ़ करके उम्र दराज जब हम हो जाते हैं तब भी हमारे अंदर का वही बचपन हमारे अंदर रहता है। बहनों का इंतज़ार, बहनों को भाई के घर जाने का इंतज़ार, ये रिश्ता या यूँ कहें कि ये पावन पर्व है ही कुछ ऐसा। भाई की कलाई पर बंधी राखी बहन की एक छोटी सी दुआ है, मेरे भाई की राह आसान हो, उसकी हर सुबह मुस्कुराए, उसकी आंखों में कभी आंसू ना आए। और भाई के लिए राखी शायद ये कहती है, बहन बड़ी हो गई है, उसका घर बदल गया है, उसकी दुनिया भी बदल गई है, लेकिन उसके दिल में अपने भाई के लिए वो बचपन आज भी वहीं ठहरा हुआ है। इसलिए राखी के इस धागे को सिर्फ कलाई पर मत बांधना, इसे दिल में बांध लेना, क्योंकि धागे टूट सकते हैं, रिश्ते नहीं टूटने चाहिए। श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और अब कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। यूं ही बने रहिए आप हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है रेडियो गुंजन, आपका अपना रेडियो चैनल।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ।

श्रोताओं, रक्षाबंधन का पावन पर्व और वो बहनें जो अब थोड़ी बड़ी हो गई हैं, या यूं कहें जिनकी शादी हो गई है और जो ये कहकर घर नहीं आती कि मुझे घर जाना है, अब उनका घर उनका मायका हो गया है, वही घर जिस घर में वो पैदा हुई, पली बड़ी, पूरा बचपन बीता, युवावस्था बीती, और जब वो ससुराल चली गई तो फिर उन्हें आना होता है अपने घर नहीं, अपने मायके। राखी आती है तो सिर्फ भाई की कलाई याद नहीं आती, याद आता है वो आंगन जहाँ कभी नंगे पांव दौड़ा करती थी मैं, याद आता है वो कमरा जहाँ मेरी हंसी की आवाज़ दीवारों में बसी थी, वो माँ की पुकार, वो पिताजी की डांट, और भाई के साथ वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ जिनमें हार कर भी मैं खुश हो जाती थी। फिर एक दिन मैं बड़ी हुई, डोली उठी, और वो घर जो कभी मेरा पूरा संसार था पीछे छूट गया। कहते हैं शादी के बाद बेटी का घर बदल जाता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि बेटी का दिल कभी उस घर से निकलता ही नहीं। आज भी राखी पर जब भाई की कलाई देखती हूँ तो उसमें सिर्फ धागा नहीं दिखता, मुझे अपना पूरा का पूरा बचपन दिखाई देता है। वो भाई दिखाई देता है जिसके साथ कभी छोटी छोटी बात पर लड़कर माँ के आंचल में छुप जाया करती थी, और फिर कुछ ही देर बाद उसी भाई के साथ बैठकर कभी उसकी थाली से खाना उठाना, कभी उसके बाल खींचना। समय बहुत आगे निकल गया, लोग बदल गए, घर बदल गए, आंगन में शायद अब वो आवाज़ें नहीं रही हैं, लेकिन अजीब है, मायका चाहे कितना भी बदल जाए, बहन की यादों में वो कभी ना तो बदलता है ना बूढ़ा होता है। वहाँ आज भी एक छोटी सी लड़की दौड़ रही होती है, पोनी टेल किए हुए, आंखों में हजार सपने लिए हुए, और राखी की थाली लिए अपने भाई के पीछे पीछे भाग रही होती है। शायद इसीलिए राखी का त्यौहार आते ही बहन थोड़ी सी बड़ी नहीं, फिर से वही छोटी बच्ची बन जाती है। और मन ही मन बस इतना कहती है, भैया राखी तो मैं हर साल बांध दूंगी, बस तुम मेरे उस बचपन को मत भूलना जो आज भी तुम्हारे घर के किसी कोने में मेरी राह देखता बैठा है। क्योंकि बहन के लिए राखी सिर्फ भाई की कलाई पर बांधा धागा नहीं, राखी वो रास्ता है जो उसे हर साल वापस उसके मायके ले जाता है, भले ही सिर्फ यादों में।

श्रोता 91.2 MHz पर आप इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोता, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ खास होता है और हर रिश्ते से हमें कोई ना कोई उम्मीद होती है, हमारे सपने जुड़े होते हैं। चाहे वो माता पिता का रिश्ता हो, माता पिता का अपने बच्चों के साथ रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, हर रिश्ते की डोर जुड़ी होती है प्यार और विश्वास के साथ। और उस रिश्ते में प्यार और विश्वास यूं ही बना रहे तभी उस रिश्ते की मिठास जो है वो बनी रहती है और ताउम्र वो रिश्ता बहुत ही प्यार के साथ चलता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी रिश्ते हैं, जितने भी रिश्ते हैं, उनमें प्यार विश्वास यूं ही बना रहे। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला।

श्रोताओ 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कार्यक्रम प्रादेशिक समाचारों के बाद भी जारी रहेगा, बने रहिए 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। देश व प्रदेश में श्रद्धापूर्वक व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने जम्मू और हिमाचल के बीच समेकित आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने पर दिया बल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, प्रदेश में पेयजल आपूर्ति को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार डिजिटल माध्यमों को दे रही है बढ़ावा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, असंवैधानिक कानून बनाकर हाईकोर्ट में फजीहत करवा रही है सुक्खू सरकार। और कुल्लू के भेखली क्षेत्र में ब्रेक फेल होते ही ढांक से टकराई HRTC की बस, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। अब समाचार विस्तार से। भाई बहन के पवित्र प्रेम व अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व आज देश सहित प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी समृद्धि, स्वास्थ्य व कल्याण के लिए प्रार्थना की। वहीं भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा और मदद का वचन दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों के बच्चों व विद्यार्थियों के साथ रक्षाबंधन मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहां तक कि पेड़ों को भी बांधा जाता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्यौहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करे और खुशहाली और समृद्धि लाए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया कि रक्षाबंधन का त्यौहार समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कामना की कि ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां व समृद्धि लेकर आएगा। उन्होंने इस अवसर पर कामना की कि ये पावन पर्व सभी के जीवन को आलोकित करें। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने शिमला स्थित आरट्रैक के जवानों के साथ रक्षाबंधन का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया। इस अवसर पर महिला मोर्चा की बहनों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उनके स्वस्थ, सुरक्षित व दीर्घायु जीवन की कामना की। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डीजी ठाकुर ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि मोर्चा की बहनों ने सैनिक भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर ये संदेश दिया है कि पूरा समाज व देश अपने वीर जवानों के साथ मजबूती से खड़ा है। उधर लाहौल स्पीति के जिस्पा स्थित BRO के जवानों और दारचा पुलिस चौकी में तैनात प्रदेश पुलिस के जवानों की कलाई पर भी भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने राखी बांधी। उन्होंने कहा कि दुर्गम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में देश की सेवा व सुरक्षा के लिए समर्पित जवानों की कलाई पर राखी बांधना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि सम्मान, विश्वास और भाईचारे का प्रतीक है। इस अवसर पर उन्होंने जवानों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए उनके समर्पण और सेवाभाव को नमन किया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने जम्मू क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के बीच एक समेकित आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने की अपार संभावनाओं पर बल दिया है। वे आज जम्मू स्थित प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि दोनों क्षेत्रों में मंदिरों, धार्मिक स्थलों और तीर्थ स्थलों की समृद्ध विरासत मौजूद है। इन पवित्र स्थलों के बीच बेहतर संपर्क सुविधा और समन्वित प्रचार प्रसार से श्रद्धालुओं को अधिक समृद्ध तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान किया जा सकता है। साथ ही जम्मू और हिमाचल प्रदेश की साझा आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत को भी देश दुनिया के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश के लोगों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाने और जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नई तकनीक और डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज मंडी में जल शक्ति विभाग के उच्च अधिकारियों से विभिन्न नई व उन्नयन योजनाओं की जानकारी लेते हुए उन्होंने ये बात कही। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंडी शहर में पेयजल और सीवरेज व्यवस्था को हाईटेक बनाने के लिए जल शक्ति विभाग द्वारा सितंबर माह में हिम जलदूत मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये ऐप नगर निगम मंडी के 13 वार्डों के करीब 10,900 उपभोक्ताओं को डिजिटल रूप से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ रुपए से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIR News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद।
1: कल मैंने अपना बीपी और शुगर की जांच करवाई और मेरा शुगर बढ़ा हुआ आया है।
2: अच्छा, कहाँ करवाई ये जांच?
1: यही अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। बड़ी सुविधा है, शुगर और बीपी दोनों की जांच हुई और दवा भी आज से चालू हो जाएगी, वो भी बिना किसी पैसे के।
2: क्या मैं भी करा सकती हूँ?
1: बिल्कुल, ये जांच 30 साल से ऊपर सभी लोगों को हर साल में करवानी चाहिए।
2: मैं आज ही जाती हूँ।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति में सरकार के हस्तक्षेप से जुड़े कानून को प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार असंवैधानिक कानून बनाकर बार बार हाईकोर्ट में अपनी फजीहत करवा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि खुद को कानून का जानकार बताने वाले मुख्यमंत्री को विपक्ष ने बार बार आगाह किया है और सरकार के कानून संवैधानिक कसौटी पर सही नहीं उतर रहे हैं। इस बीच जयराम ठाकुर ने राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे टैक्सी ऑपरेटरों को जूस पिलाकर आज उनका अनशन समाप्त करवाया। टैक्सी ऑपरेटर अपनी टैक्सियों की परमिट अवधि 12 से 15 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर संवेदनहीन रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा टैक्सी ऑपरेटरों के हितों के लिए उनके साथ खड़ी है। उन्होंने ऑपरेटरों की मांगों को राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र के समक्ष उठाने का भरोसा दिया ताकि उन्हें राहत मिल सके।
4: आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन मैंने इनसे भी आग्रह किया, हम चाहते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार आप अपने अपने परिवार वालों के साथ घर में जाकर के मनाएं। और मैंने उस आग्रह को जब इनके सामने रखा, इन्होंने सहज रूप से उस आग्रह को स्वीकार किया और आज है वो जो अनशन पिछले 5 दिन से चला था आज वो समाप्त हुआ। प्रदेश सरकार के समक्ष हमने पिछले कल भी बात कही थी और उसके साथ साथ भी हम जाकर के अभी इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे, हम इस मामले को पूरा केंद्र सरकार के सामने भी रखेंगे ताकि जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के सभी साथी हैं उनको राहत मिल सके।
0: कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते भेखली क्षेत्र में ब्यासर रोड पर कटाहर गांव के समीप आज दोपहर एचआरटीसी की बस ब्रेक फेल होने से ढांक से टकरा गई। निगम बस की ब्रेक फेल होने पर चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार बस में सवार करीब 46 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों में 35 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल हैं। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि घायलों में से बस चालक सहित 13 को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि अन्य घायलों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। सिरमौर जिला के नाहन शहर में सदियों से रक्षाबंधन के पर्व पर पतंगबाजी की परंपरा चली आ रही है, लेकिन अब समय के साथ ये परंपरा लुप्त होने की कगार पर है। रियासत काल से चली आ रही ये परंपरा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि नाहन शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का भी हिस्सा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले रक्षाबंधन के पर्व पर पूरा आसमान पतंगों से भरा नजर आता था और हर आयु वर्ग के लोग इसमें हिस्सा लेते थे। उनका कहना है कि बदलते समय के साथ अब ये परंपरा दम तोड़ती नजर आ रही है।
5: रक्षाबंधन में पहले नाहन में पतंगबाजी बहुत ज्यादा होती थी। सुबह सुबह रक्षाबंधन जब हो जाता था तो भाई सबसे पहले छतों पे चढ़ के पतंगे पकड़ के और पतंगे उड़ाना शुरू कर देते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ट्रेंड जा चुका है, क्योंकि इसमें जो हमारा ड्रॉबैक हो गया वो एक तो मोबाइल है, बच्चे आजकल सब 24 घंटे मोबाइल पे होते हैं और जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं वो बाहर निकल चुके हैं, तो ये पतंगों का जो है ये लगभग खत्म ही हो चुका है, इक्का दुक्का पतंग देखने को मिलता।
0: प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा। पिछले एक सप्ताह से मॉनसून के कमजोर पड़ने के साथ ही बारिश का क्रम धीमा हुआ है, जिसके तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 30 अगस्त की शाम से प्रदेश में फिर से मॉनसून सक्रिय होगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि 30 अगस्त से 3 सितंबर तक मॉनसून की सक्रियता से मैदानी व मध्यवर्ती क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश व प्रदेश में श्रद्धा पूर्वक व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भाई बहन के पवित्र पर्व का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने जम्मू और हिमाचल के बीच समेकित आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने पर दिया बल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, प्रदेश में पेयजल आपूर्ति को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार डिजिटल माध्यमों को दे रही है बढ़ावा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा असंवैधानिक कानून बनाकर हाईकोर्ट में फजीयत करवा रही है सुक्खू सरकार। और कुल्लू के भेखली क्षेत्र में ब्रेक फेल होते ही ढांक से टकराई एचआरटीसी की बस, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
6: श्रोता 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सुन रहे हैं और सभी श्रोताओं का स्वागत भी करते हैं फिर से कार्यक्रम में। और ये कहते हुए दिल में धुकधुकी सी होती है श्रोताओं की, अब आपसे विदा लेनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, राखी का ये प्यारा सा धागा आपके रिश्तों में हमेशा प्यार, विश्वास और अपनापन बनाए रखे। दूरी चाहे कितनी भी हो, दिलों के बीच की डोर कभी ना टूटे। आप सभी को रक्षाबंधन की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। श्रोताओं, इसी एहसास के साथ आज के इस सफर को यहीं विराम दे रही हूं। उम्मीद है आज की मेरी ये बातें और गीत जो आपने सुने उससे आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान और दिल में मिठास जो है वो इन गीतों ने छोड़ी होगी। अब आपकी रेडियो दोस्त पिंकी आपसे ले रही है विदा। श्रोताओं, इसी वादे के साथ कि बहुत जल्द, जी हाँ, गुड इवनिंग धर्मशाला में अब आपसे विदा ले रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में। तब तक श्रोताओं, यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो चैनल रेडियो गुंजन धर्मशाला।

रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, भाई बहन का रिश्ता है सबसे खास और शानदार, राखी के धागे में छिपी है विश्वास की मिठास, हर जन्म में बना रहे भाई बहन का साथ। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में प्रेम, खुशियाँ और अपनों का साथ लेकर आए। भाई बहन के इस खूबसूरत रिश्ते में हमेशा स्नेह, सम्मान और विश्वास की डोर मजबूत बनी रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। रेडियो गुंजन, आपकी आवाज़, आपके अपनों के।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।
4: हेलो, देख ले भाई कुछ इंतजाम होता उधर।
5: मैंने कितनी बार कही थी, मेरी सुनते ही कहाँ है ये।
4: हाँ तने बेरा, बस सारी दुनियादारी का इब की बार मदद कर दे बस। राम राम राम राम। 30,000 का होगा बीज, कैसे करूँगा इंतजाम बता। किसानी कैसे होती है पता भी है तने, ये लेन देन के काम मन से मालन दे।

0: तू घर का चूल्हा चौको देख ले, वही बहुत है।
1: ये लेन देन ठीक से होगा तभी तो घर संभलेगा ना।
0: तन्ना समझ है लेन देन की, ले पकड़।
1: पैसा सही तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ बचाना है, यही होवे ना लेन देन।
0: बोलन में और करण में बहुत फर्क हुआ है।
1: सही कह रहे हो। ये देखो 17,000 है मेरे पास।
0: पासबुक?
1: दूध बेच के सारा पैसा नहीं दिया था तेरे, थोड़ा जमा करवा दिए थे खाते में। अब बाकी पैसों का इंतजाम कर लो, हम दोनों मिलकर अपना भला बुरा नफा नुकसान सब देख सके हैं।
0: हाँ घनश्याम, तेरी बहन ने बचा लिए ना, तो भैंस बेचनी पड़ती। ईब लग गया है, ये असली किसान तो तेरी बहन है।
2: महिलाओं की आर्थिक निर्णयों में बराबर की भागीदारी, मतलब परिवार में उन्नति।
3: रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन।

जन्माष्टमी पर्व आइए मिलकर मनाएं हम सब एक साथ। आने वाले जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

0: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो। क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
1: नेहा।
2: हाँ जी।
1: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
2: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
1: अच्छा बाबा बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
2: नहीं जाना।
3: ये भगवान क्या जुलूम है,

रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, भाई बहन का रिश्ता है सबसे खास और शानदार, राखी के धागे में छिपी है विश्वास की मिठास, हर जन्म में बना रहे भाई बहन का साथ। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में प्रेम, खुशियाँ और अपनों का साथ लेकर आए। भाई बहन के इस खूबसूरत रिश्ते में हमेशा स्नेह, सम्मान और विश्वास की डोर मजबूत बनी रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। रेडियो गुंजन आपकी आवाज़, आपके अपनों।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।
4: हेलो, देख ले भाई कुछ इंतजाम होता उधर।
5: मैंने कितनी बार कही थी, मेरी सुनते ही कहाँ ये।
4: हाँ तने बेरा, बस सारी दुनियादारी का इब की बार मदद कर दे बस। राम राम राम राम। 30,000 का होगा बीज, कैसे करूँगा इंतजाम बता। किसानी कैसे होती है पता भी है तने, ये लेन देन के काम मन से मालन दे। तू घर का चूल्हा चौको देख ले, वही बहुत है।
5: ये लेन देन ठीक से होगा तभी तो घर संभलेगा ना।
4: तन्ने समझ है लेन देन की, ले पकड़।
5: पैसा सही तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ बचाना है, यही होवे ना लेन देन।
4: बोलन में और करण में बहुत फर्क हुआ है।
5: सही कह रहे हो, ये देखो 17,000 है मेरे पास।
4: पासबुक?
5: दूध बेच के सारा पैसा नहीं दिया था तेरे थे, थोड़ा जमा करवा दिए थे खाते में। अब बाकी पैसों का इंतजाम कर लो, हम दोनों मिलकर अपना भला बुरा नफा नुकसान सब देख सके हैं।
4: हाँ घनश्याम, तेरी बहन ने बचा लिए ना, तो भैंस बेचनी पड़ती, ईब लग गया है। ये असली किसान तो तेरी बहन है।
6: महिलाओं की आर्थिक निर्णयों में बराबर की भागीदारी, मतलब परिवार में उन्नति।
7: रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन,

जन्माष्टमी पर्व आइए मिलकर मनाएं हम सब एक साथ। आने वाले जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

0: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो। क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
1: नेहा।
2: हाँ जी।
1: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
2: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
1: अच्छा बाबा, बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
2: नहीं जाना।
3: ये भगवान, क्या जुलूम है।

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार। भाई बहन का रिश्ता है सबसे खास और शानदार। राखी के धागे में छिपी है विश्वास की मिठास। हर जन्म में बना रहे भाई बहन का साथ। रेडियो गुंजन के ओर से आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में प्रेम, खुशियाँ और अपनों का साथ लेकर आए। भाई बहन के इस खूबसूरत रिश्ते में हमेशा स्नेह, सम्मान और विश्वास की डोर मजबूत बनी रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। रेडियो गुंजन, आपकी आवाज़, आपके अपनों।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।
4: हेलो, देख ले भाई कुछ इंतजाम होता उधर।
5: मैंने कितनी बार कही थी, मेरी सुनते ही कहाँ है ये।
4: हाँ तन्ने बेरा, बस सारी दुनियादारी का इब की बार मदद कर दे बस। राम राम। राम राम। 30,000 का होगा बीज, कैसे करूँगा इंतजाम बता। किसानी कैसे होती है पता भी है तन्ने, ये लेन देन के काम मन से मालन दे। तू घर का चूल्हा चौक देख ले।

0: कोई बहुत है।
1: ये लेन देन ठीक से होगा तभी तो घर संभलेगा ना।
0: तन्ना समझ है लेन देन की, ले पकड़।
1: पैसा सही तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ बचाना है, यही होवे ना लेन देन।
0: बोलन में और करण में बहुत फर्क हुआ है।
1: सही कह रहे हो। ये देखो 17,000 है मेरे पास।
0: पासबुक?
1: दूध बेच के सारा पैसा नहीं दिया था तेरे थे, थोड़ा जमा करवा दिए थे खाते में। अब बाकी पैसों का इंतजाम कर लो, हम दोनों मिलकर अपना भला बुरा नफा नुकसान सब देख सके हैं।
0: हाँ घनश्याम, तेरी बहन ने बचा लिए ना, तो भैंस बेचनी पड़ती। ईब लग गया है, ये असली किसान तो तेरी बहन है।
2: महिलाओं की आर्थिक निर्णयों में बराबर की भागीदारी, मतलब परिवार में उन्नति।
3: रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन,

जन्माष्टमी पर्व आइए मिलकर मनाएं हम सब एक साथ। आने वाले जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

0: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो। क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
1: नेहा।
2: हाँ जी।
1: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
2: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
1: अच्छा बाबा बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
2: नहीं जाना।
3: ये भगवान क्या जुलूम है,

प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

सपना मैंने देखा है, एक सपना मैंने

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।